listening to Radio Olive 106.3 FM. अब सुनिए ऑलिव का जबरदस्त हिट।

सुन रहे हैं रेडियो ओलिव 106.3 FM जियो बिंदास 106.3 FM.

सुनते हैं नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM।

0: Cool song.
1: Radio Olive par aane wala gana cool song of the hour.
2: क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है
0: cool song.

Manila's number one radio station. Radio Olive, 106.3 FM. Gio Bindas. अब सुनिए ऑलिव का जबरदस्त है।

0: के कंधे पर हाथ रखकर कहा है कि क्या काम किया छोटे तूने जनाब, खुद से हैप्पी रहोगे तभी तो हैप्पीनेस फैलाओगे, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी, जियो बिंदास।
1: नमस्कार, मैं हूँ आर माधवन। आप सुन रहे हैं रेडियो ऑलिव 106.3 FM।

गानों के साथ या हैप्पीनेस बट रही है, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी, जियो बिंदास। आप सुन रहे हैं रेडियो ऑलिव 106.3 FM, जियो बिंदास।

0: हजार कतरी रियाल सेविंग ग्रोथ पे मिलेगा एक कूपन या सिर्फ 50% सैलरी सेव करो एंड एंटर द ड्रॉ।
1: न्यू कस्टमर हो तो अकाउंट खोलो और फर्स्ट सैलरी ट्रांसफर पे गारंटीड चांस टू विन,
0: और 9 महीने की कंसिस्टेंट सैलरी ट्रांसफर के साथ मेगा ड्रॉ में एंट्री पक्की।
1: तो फिर सोचना क्या, अगले मिलीनियर आप हो सकते हो। आज ही शुरू करो सेविंग्स। कमर्शियल बैंक, सेव एंड विन।
2: Grow your brand across Qatar's key audiences. Connect with Hindi listeners on Radio Olive 106.3 FM, Malayalam audiences on Radio Suno 91.7 FM, and Arabic listeners on Tatkar 107.4 FM. On-air visibility supported by performance-driven digital marketing campaigns. Simple, effective, integrated. Call 3009-1063 or 3082-1063.
3: Radio Olive Par.
4: Fresh song of the hour.

0: सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM।
1: रेडियो ओलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द आवर।
2: क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है।

आपकी एक छोटी सी मुस्कुराहट किसी का दिन बना सकती है. सो स्प्रेड दी हैप्पीनेस, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस. रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी. जियो बिंदास.

0: कभी खुद के कंधे पर हाथ रखकर कहा है कि क्या काम किया छोटे तूने? जनाब, खुद से हैप्पी रहोगे तभी तो हैप्पीनेस फैलाओगे, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी, जियो बिंदास।
1: लाइफ 24/7 चलती है तो डेंटल केयर सिर्फ ऑफिस आवर्स में क्यों मिले? नसीम सर्जिकल एंड मेडिकल सेंटर, सी रिंग रोड का डेंटल डिपार्टमेंट अब है 24/7 ओपन। रूटीन केयर, ट्रीटमेंट या डेंटल इमरजेंसी, एक्सपर्ट डेंटिस्ट और एडवांस फैसिलिटीज के साथ केयर हर वक्त अवेलेबल है। कॉल 4411133। ऑल्सो विजिट आवर डेंटल सेंटर्स इन अजीजिया और मुंतजा। नसीम सर्जिकल एंड मेडिकल सेंटर, हेल्दी स्माइल्स एनी टाइम।
2: Grow your brand across Qatar's key audiences. Connect with Hindi listeners on Radio Olive 106.3 FM, Malayalam audiences on Radio Suno 91.7 FM, and Arabic listeners on Tetkar 107.4 FM. On-air visibility supported by performance-driven digital marketing campaigns. Simple, effective, integrated. Call 3009-1063 or 3082-1063.
3: Hi, मैं हूँ विवेक आनंद ओबरॉय। यू आर लिसनिंग टू रेडियो ऑलिव जियो बिंदास।
4: ऑलिव सुनो रेडियो नेटवर्क, कतर्स नंबर वन एशियन रेडियो नेटवर्क। सिर्फ नंबर वन लोग सुनते हैं नंबर वन रेडियो स्टेशन, रेडियो ऑलिव 106.3 FM।

गानों के साथ या हैप्पीनेस बढ़ रही है, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी, जियो बिंदास। यू आर लिसनिंग टू रेडियो ऑलिव 106.3 FM।

0: हैप्पीनेस बांटोगे तभी तो बढ़ेगी,
1: क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी, जियो बिंदास।
2: कमर्शियल बैंक प्रेजेंट्स सीबी 2026 मिलियन रियाल्स ड्रीम।
3: अब सिर्फ सेविंग्स नहीं, सपने ग्रो होंगे। जीतिए पूरे 5 मिलियन रियाल्स कैश प्राइजेस।
2: जीतने के चार रास्ते। पहला, अपना अकाउंट बैलेंस बढ़ाइए, हर 10,000 रियाल्स ग्रोथ पर पाइए एक कूपन।
3: दूसरा, अगर सैलरी 4,000 प्लस है या 50% सेव किया है तो आप एलिजिबल है।
2: तीसरा, नए कस्टमर्स को पहली सैलरी या 10,000 फंडिंग पर गारंटीड कूपन। और चौथा, 9 महीने रेगुलर सैलरी पर पाइए एक एक्स्ट्रा कूपन और मेगा ड्रॉ टिकट।

0: सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 एफएम
1: बिंदास
2: कूल सॉन्ग
3: रेडियो ओलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द आवर।

0: हैप्पीनेस फ्री में बट रही है, जितनी चाहो उतनी बटोर लो, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी, जियो बिंदास।
1: सोचो अगर सेविंग से आप बन जाओ मिलियनेयर, कमर्शियल बैंक के सेव एंड विन कैंपेन में भाग लीजिए।
2: हर 10,000 कतरी रियाल सेविंग ग्रोथ पे मिलेगा एक कूपन, या सिर्फ 50% सैलरी सेव करो एंड एंटर द ड्रॉ।
1: न्यू कस्टमर हो तो अकाउंट खोलो और फर्स्ट सैलरी ट्रांसफर पे गारंटीड चांस टू विन,
2: और 9 महीने की कंसिस्टेंट सैलरी ट्रांसफर के साथ मेगा ड्रॉ में एंट्री पक्की।
1: तो फिर सोचना क्या, अगले मिलियनेयर आप हो सकते हो। आज ही शुरू करो सेविंग्स, कमर्शियल बैंक, सेव and win.
3: Grow your brand across Qatar's key audiences. Connect with Hindi listeners on Radio Olive 106.3 FM, Malayalam audiences on Radio Suno 91.7 FM, and Arabic listeners on Tetkar 107.4 FM. On-air visibility supported by performance-driven digital marketing campaigns. Simple, effective, integrated. Call 3009-1063 or 3082-1063.
4: Hi, I'm Sohali Khan, and you're listening to Radio Olive, Jio Bindas.
5: I'm the number one, Radio Olive.
6: Olive Suno Radio Network, Qatar's number one Asian radio network.
7: You are listening to Qatar's number one radio station, Radio Olive, 106.3 FM, Jio Bindas.

0: छोटी सी मुस्कुराहट किसी का दिन बना सकती है. सो स्प्रेड द हैप्पीनेस, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस. रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी. जियो बिंदास.
1: लाइफ 24/7 चलती है तो डेंटल केयर सिर्फ ऑफिस आवर्स में क्यों मिले? नसीम सर्जिकल एंड मेडिकल सेंटर, सी रिंग रोड का डेंटल डिपार्टमेंट अब है 24/7 ओपन. रूटीन केयर, ट्रीटमेंट या डेंटल इमरजेंसी, एक्सपर्ट डेंटिस्ट और एडवांस फैसिलिटीज के साथ केयर हर वक्त अवेलेबल है. कॉल 4411133. ऑल्सो विजिट आवर डेंटल सेंटर्स इन अजीजिया और मुंतजा. नसीम सर्जिकल एंड मेडिकल सेंटर, हेल्दी स्माइल्स एनी टाइम.
2: आप सुन रहे हैं रेडियो ऑलिव 106.3 FM. जियो बिंदास.

कभी खुद के कंधे पर हाथ रखकर कहा है कि क्या काम किया छोड़े तूने? जनाब, खुद से हैप्पी रहोगे तभी तो हैप्पीनेस फैलाओगे, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी, जियो बिंदास। रेडियो

0: You are listening to Radio Olive 106.3 FM.
1: Radio Olive par aane wala gaana cool song of the hour.
2: क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है
3: cool song.

0: हैप्पीनेस फ्री में बट रही है, जितनी चाहो उतनी बटोर लो, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी, जियो बिंदास।
1: हाय, मैं हूँ दिव्या दत्ता एंड यू आर लिसनिंग टू रेडियो ऑलिव जियो बिंदास।
2: ऑलिव सुनो रेडियो नेटवर्क, कतर्स नंबर वन एशियन रेडियो नेटवर्क। सिर्फ नंबर वन लोग सुनते हैं नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ऑलिव 106.3 FM।

0: आपकी एक छोटी सी मुस्कुराहट किसी का दिन बना सकती है. सो स्प्रेड दी हैप्पीनेस, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस. रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी. जियो बिंदास.
1: Grow your brand across Qatar's key audiences. Connect with Hindi listeners on Radio Olive 106.3 FM, Malayalam audiences on Radio Suno 91.7 FM, and Arabic listeners on Tetkar 107.4 FM. On-air visibility supported by performance-driven digital marketing campaigns. Simple, effective, integrated. Call 3009-1063 or 3082-1063.

0: कभी खुद के कंधे पर हाथ रखकर कहा है कि क्या काम किया छोटे तूने? जनाब, खुद से हैप्पी रहोगे तभी तो हैप्पीनेस फैलाओगे, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी, जियो बिंदास।
1: कमर्शियल बैंक प्रेजेंट्स सीबी 2026 मिलियन रियाल्स ड्रीम।
2: अब सिर्फ सेविंग्स नहीं, सपने ग्रो होंगे। जीतिए पूरे 5 मिलियन रियाल्स कैश प्राइजेस।
1: जीतने के चार रास्ते। पहला, अपना अकाउंट बैलेंस बढ़ाइए, हर 10,000 रियाल्स ग्रोथ पर पाइए एक कूपन।
2: दूसरा, अगर सैलरी 4,000 प्लस है या 50% सेव किया है तो आप एलिजिबल है।
1: तीसरा, नए कस्टमर्स को पहली सैलरी या 10,000 फंडिंग पर गारंटीड कूपन। और चौथा, 9 महीने रेगुलर सैलरी पर पाइए एक एक्स्ट्रा कूपन और मेगा ड्रॉ टिकट।

काफी क्वेश्चन पेपर वाली फील देता हुआ ये गाना हर बात पे इसने सवाल पूछा है कि दिल क्यों तोड़ा, ये क्यों किया, वो क्यों किया, एग्जैक्टली हमारे बॉस की तरह। वेलकम बैक 106.3 रेडियो ऑलिव पर, मैं हूँ आपकी कशिश और शो आपके लिए लाइफ मस्त है लेकर आ गई हूँ। एंड देखिए, वीकेंड के बाद जब आप ऑफिस आओ तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि आप ऑफिस आते हो। मतलब हम ये जो है, जब हम ऑफिस की लिफ्ट पे चढ़ रहे थे तब हम सब की शक्ल देख के हम सब के मन में बस यही जो है आ रहा था कि हमारी सोल जो है, हमारी जो आत्मा है, वो अभी भी बिस्तर पर ब्लैंकेट ओढ़कर सोला पर अपना एसी का टेम्परेचर करके सो रही है और हम बस आ गए हैं उठकर, क्योंकि आना था। वैसे अगर आज आपकी छुट्टी है तो काफ़ी लकी हैं आप, सबकी नहीं होती। 3311063 ये हमारा व्हाट्सएप वाला नंबर है, इस पर आकर वीकेंड कैसा रहा और आगे आज का क्या प्लान है इस पर सारी डिस्कशन जो है वो कर लेंगे। खैर, काफ़ी सारी जो है चीज़ें मैंने इस वीकेंड पर नोटिस की हैं वो सारी आपसे डिस्कस करने वाली हूँ। कौन सी मूवी रिलीज़ हुई, उसका इंस्टाग्राम पे क्या रिव्यू आया है, एक ऐसी कौन सी मूवी है जो आप आज देख सकते हैं मूवी रिकमेंडेशन के तौर पे, वो मैं आपको बताने वाली हूँ। एंड फैशन की बात करेंगे और हम काय की बात करने वाले, किसी की शादी हुई है उस पर भी बात करेंगे। लेकिन उससे पहले कॉकटेल 2 का एक गाना आ रहा है आपके रेडियो सेट पर, इस गाने को इंजॉय कीजिए और बाकी आपकी कशिश के साथ स्टे ट्यून रहिए और कहते रहिए जियो बिंदास।

0: सेविंग से आप बन जाओ मिलियनेयर। कमर्शियल बैंक के सेव एंड विन कैंपेन में भाग लीजिए।
1: हर 10,000 कतरी रियाल सेविंग ग्रोथ पे मिलेगा एक कूपन, या सिर्फ 50% सैलरी सेव करो एंड एंटर द ड्रॉ।
0: न्यू कस्टमर हो तो अकाउंट खोलो और फर्स्ट सैलरी ट्रांसफर पे गारंटीड चांस टू विन,
1: और 9 महीने की कंसिस्टेंट सैलरी ट्रांसफर के साथ मेगा ड्रॉ में एंट्री पक्की।
0: तो फिर सोचना क्या, अगले मिलियनेयर आप हो सकते हो। आज ही शुरू करो सेविंग्स। कमर्शियल बैंक, सेव एंड विन।
2: सत श्रीकाल जी, मैं हाँ हरभजन मान। तुम सुन रहे हो कतर हिंदी रेडियो स्टेशन रेडियो ऑल ऑफ 106.3 FM जियो बिंदास।
3: ऑलिव सुनो रेडियो नेटवर्क, कतर्स नंबर 1 एशियन रेडियो नेटवर्क।

0: मूवी का नाम मेट्रो इन दोनों और गाने का नाम याद। यार देखो कई बार ना मुझे ऐसा लगता है कि गानों का नाम रखने में जो है बिल्कुल एफर्ट्स ही नहीं डालते हैं लोग। वेलकम बैक 106.3 रेडियो ऑलिवर, मैं हूँ आपकी कशिश एंड शो आपके लिए लाइफ मस्त है लेकर आ गई हूँ। सैटरडे का ये दिन है जहाँ पर हम बहुत जोरों शोरों से इंजॉय करने की कोशिश कर रहे हैं, वापस एनर्जी में आने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है हम वीकेंड का इंतजार इसलिए करते हैं कि वापस जो है खुद को री एनर्जाइज कर सकें, लेकिन और ज़्यादा आलसी होकर हम अपने घर से निकलते हैं। पता नहीं मेरे साथ ही ऐसा होता है, आपके साथ भी ऐसा होता है, लेकिन बात मैं कर रही थी कि गानों के नाम जो है आजकल लोग एफर्ट्स नहीं डाल रहे हैं उसमें। गाने का नाम जो है, जो सबसे ज्यादा वर्ड यूज हुआ है गाने में, उसको रख दिया, याद रख दिया। अब हम जो है किसी अच्छी लाइन से जो है गाने को सर्च करेंगे इंस्टाग्राम पे, लेकिन वो नहीं मिलेगा क्योंकि गाने का नाम जो है वो कुछ और है। ठीक है गाइस, मेरी अदर टाइप की जो प्रॉब्लम्स है इनका कोई सलूशन नहीं है, लेकिन एक और मेजर प्रॉब्लम जो है वो हम डिस्कस करने वाले। देखो प्रॉब्लम नहीं है बिकॉज हम ऐसी जगह पे रहते हैं जहां पर इसका सलूशन जो है वो है, लेकिन फिर भी टेम्परेचर की अगर मैं बात करूं सो एडवाइजरी जो है वो जारी हो चुकी है कि अगले 13 दिन भीषण गर्मी पड़ने वाली है, बहुत ज्यादा ह्यूमिडिटी रहने वाली है। अभी का टेम्परेचर अगर मैं बताऊं तो 38 डिग्री सेल्सियस हो रहा है दोहा में, हाईएस्ट टेम्परेचर जो है वो 40 डिग्री सेल्सियस रहेगा एंड लोएस्ट टेम्परेचर आज का 28 डिग्री सेल्सियस रहने वाला है, लेकिन ह्यूमिडिटी तो बहुत ज़्यादा रहेगी। इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि जो है सनस्क्रीन लगा के निकलना एंड जितना कम हो सके उतना निकलना घर से बाहर, मतलब अगर इग्नोर कर सकते हो घर से बाहर निकलना तो इग्नोर कर दो। बाकी देखो ऐसी जगह पे रहते हैं हम जहाँ पे हर जगह एसी है, तो बस इंजॉय करो। बाकी आपकी को जो है गर्मी से थोड़ा सा और छुटकारा दिलाने के लिए कूल सॉन्ग ऑफ द आवर जो है वो भी मैं ले आई हूँ, सो इस गाने को इंजॉय करो। बाकी थोड़ी सी देर में आकर जो है बॉलीवुड की बात करने वाले हैं हम।
1: रेडियो ऑलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द आवर।
2: क्या बात है सर, क्या पर ये बात है।
0: गाने का नाम हाल है, तो अपना हाल चाल मुझे 3311063 पर मैसेज करके बता दो और ये गाना एंजॉय करो आपकी कशिश के साथ। कहते रहो जियो बिंदास।

0: are you?
1: I am आपकी कशिश, बस यही कह सकती हूँ मैं, आपकी कशिश हूँ मैं. Welcome back 106.3 Radio Olive पर. मैं हूँ आपकी कशिश, शो आपके लिए लाइफ मस्त है लेकर आ गई हूँ. एंड ये गाना जैसे ही मैं सुनती हूँ वैसे ही मेरे दिमाग में ऋतिक रोशन जी जो है वो डांस करने लग जाते हैं. उस रेड रेड बोल दिया भाई मैंने, उस रेड वाली कार से बाहर निकलते हैं. ओह माय गॉड ये. अब देखिए जितने भी ऋतिक रोशन फैंस हैं वो कहीं ना कहीं वेट कर रहे थे कि कब ऋतिक रोशन जो है वो कमबैक करेंगे, कब हमें मौका मिलेगा उन्हें बड़ी स्क्रीन पे देखने का. लेकिन ऐसे नहीं देखना था ऋतिक जी आपको, हमें ऐसे तो बिल्कुल नहीं देखना था. सो अल्फा मूवी जो है वो इस 3 जुलाई को यानी कल रिलीज हो गई. एंड देखिए मैंने तो नहीं देखी है बिकॉज ऑफ कोर्स इसे नहीं तो मैं सेविंग नहीं कर पा रही हूँ जितनी मैं मूवी देख पाऊँ. तो मैं जो है सेकेंड हैंड रिव्यू आपके लिए लेकर आ गई हूँ कि इंस्टाग्राम पे रिव्यूज जो है वो किस तरीके के हैं, लोग जो है क्या कह रहे हैं इस मूवी के बारे में. सो जो भी मैं कहने वाली हूँ वो मेरे शब्द नहीं है, वो रिव्यू देने वाले लोगों के ही शब्द हैं. सो लोगों का ये कहना है कि ये मूवी जो है बहुत बेहतरीन हो सकती थी, बहुत अच्छी हो सकती थी. शर्वरी और आलिया भट्ट दोनों ने ही बहुत अच्छे एक्शन सीन्स किए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये स्टोरी जो है वो मात खा गई. मतलब मूवी अच्छी हो सकती थी लेकिन कहानी अच्छी नहीं लिखी. बॉबी देओल ने शायद एक ऐसा सीरम बना दिया है इस मूवी में जिसे इंजेक्ट करते ही बॉडी में आप सुपर ह्यूमन बन जाते हो. देखिए मैं नॉर्मली अपने स्किन केयर वाला अगर जो है सीरम टाइम से लगा लूँ तो मैं भी सुपर ह्यूमन लग सकती हूँ. लेकिन ये मूवी जो है कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि चैट जीपीटी से लिखवाई गई है कि चैट जीपीटी एक स्पाई मूवी लिख दो जिसमें आलिया भट्ट को हमें कास्ट करना है. मैं नहीं कह रही हूँ, ऐसा रिव्यू देने वालों का कहना है. अब इस मूवी को देखना है या नहीं देखना, ये मूवी अच्छी है या अच्छी नहीं है, ये तो आप मूवी देखने के बाद ही मुझे बता सकते हो. सो जल्दी से अगर आपने मूवी देख ली है तो 3311063 ये हमारा व्हाट्सएप वाला नंबर है, उस पर आकर आप मुझे बता सकते हो कि यार कशिश देखो मुझे तो मूवी अच्छी लगी या मुझे तो और ज़्यादा खराब लगी. आपको क्या लगा इस मूवी के बारे में बताइए मुझे 3311063 पर. आपसे बस इतनी सी तो अर्जी है मेरी, अर्जियाँ कर रही हूँ मैं आपसे कि मुझे जो है मैसेज कर दीजिए 3311063 पर. फिलहाल अर्जियां करते करते अर्जियां गाना जो है वो आ रहा है आपके रेडियो सेट पर, इस गाने को एंजॉय कीजिए और बाकी आपकी कशिश के साथ कहते रहिए.

0: अरिजीत सिंह और निकिता गांधी की आवाज में काफी राना ट्रैक आपने एंजॉय किया 106.3 रेडियो ऑलिव पर। मैं हूँ आपकी कसुस एंड शो आपके लिए लेकर आ गई हूँ। लाइफ मस्त है एंड देखिए हर रोज की तरह आज भी मैं स्ट्रेस से लड़ने का एक फनी तरीका आपके लिए लेकर आ गई हूँ। अब देखिए यार, अक्सर क्या होता है कि मुझे अपने घर से दूर स्ट्रेस तो बस इसी बात का होता है कि यार घर पे जो है किस क्या हो रहा होगा, अभी मुझे घर की याद आती है तो मुझे स्ट्रेस हो जाता है। अब देखिए अगर आपको भी इस टाइप का कोई स्ट्रेस होता है तो आप एक काम कर सकते हैं, अपने फ़ोन पे गूगल मैप्स खोलिए एंड गूगल मैप्स के थ्रू हर उस जगह पर चली जाइए जहाँ पर आप जाना चाहते हैं। तो असल में ना सही, लेकिन आप गूगल मैप्स के जरिए जो है वो जगह देख पाएंगे, थोड़ा सा आपका मूड ना रिफ्रेश सा हो जाएगा। एक बार ट्राई करो, ये मैंने ट्राई करके देखा है 100% वर्क करता है। फिलहाल जो है आपके माइंड को फ्रेश करने के लिए, स्ट्रेस से दूर करने के लिए ऑल फ्रेश सॉन्ग ऑफ द आवर आपके लिए लेकर आ गई हूँ। सो इस गाने को एंजॉय करो, बाकी आने के बाद जो है ऑलिव अपडेट्स में जरा आपको सारी अपडेट्स दूंगी कि क्या कुछ खास होने वाला है और क्या कुछ खास हुआ।
1: रेडियो ऑलिव पर Song of the Hour, ये
0: गाना अमाल मलिक और श्रेया घोषाल की आवाज में ये ट्रैक एंजॉय कीजिए और आपकी कशिश के साथ कहते रहिए जियो बिंदास।

0: सुनते हैं नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM। कमर्शियल बैंक प्रेजेंट्स सीबी 2026 मिलियन रियाल्स ड्रीम।
1: अब सिर्फ सेविंग्स नहीं, सपने ग्रो होंगे। जीतिए पूरे 5 मिलियन रियाल्स कैश प्राइजेस।
0: जीतने के चार रास्ते। पहला, अपना अकाउंट बैलेंस बढ़ाइए। हर 10,000 रियाल्स ग्रोथ पर पाइए एक कूपन।
1: दूसरा, अगर सैलरी 4,000 प्लस है या 50% सेव किया है तो आप एलिजिबल है।
0: तीसरा, नए कस्टमर्स को पहली सैलरी या 10,000 फंडिंग पर गारंटीड कूपन। और चौथा, 9 महीने रेगुलर सैलरी पर पाइए एक एक्स्ट्रा कूपन और मेगा ड्रॉ टिकट।
2: ग्रो योर ब्रांड अक्रॉस कतर्स की ऑडियंसेस। कनेक्ट विद हिंदी लिसनर्स ऑन रेडियो ऑलिव 106.3 FM, मलयालम ऑडियंसेस ऑन रेडियो सुनो 91.7 FM एंड अरबिक लिसनर्स ऑन तत्कार 107.4 FM। ऑन एयर विजिबिलिटी सपोर्टेड बाय परफॉर्मेंस ड्रिवन डिजिटल मार्केटिंग कैंपेन्स। सिंपल, इफेक्टिव, इंटीग्रेटेड। कॉल 3009-1063 और 3082-1063।
3: मैं हूं अनिल कपूर।

0: अखा इंडिया क्या, अखा कतर भी अब ये जानता है कि आप लोगों से मैं कितना प्यार करती हूँ। वेलकम बैक 106.3 रेडियो ओलिवर, मैं हूँ आपकी कशिश एंड शो आपके लिए लाइफ मस्त है लेकर आ गई हूँ। अभी जस्ट मेरी मम्मी का मैसेज आया मुझे और उन्होंने मुझे ये जो है ना आभास करा दिया, ये उन्होंने मुझे फील करा दिया कि मैं उनसे बहुत दूर रहती हूँ और उन्हें मेरी याद नहीं आती है, क्योंकि उन्होंने मुझसे अभी जस्ट मैसेज करके ये पूछा है कि क्या कर रही हो, कहाँ हो। मम्मी मेरा शो चल रहा है, आपको मेरा शो जो है इंडिया में बैठ के टेक्निकली सुनना चाहिए क्योंकि इतने सारे लोग सुन रहे हैं, तो आप क्यों नहीं सुन रहे हो, आपकी खुद की बेटी का शो है, आपको सुनना चाहिए। बल्कि अब मेरी मम्मी जो है वो सुदेव का शो जो है वो सुबह सुनती है, वो शाम को जो है सिमरन का शो सुनती है, लेकिन पता नहीं क्यों मेरा शो नहीं सुन रही है, क्योंकि उनको ये कहना है शायद कि मेरी से तो बात वीडियो कॉल पर हो जाती है। खैर बात जो है इंपॉर्टेंट वाली कर लेते हैं। वेलकम बैक टू 106.3 रेडियो ऑलिव पर मैं लाइफ मस्त है शो आपके लिए ले आई हूँ, और ये मैं आपको फिर से इसीलिए बता रही हूँ क्योंकि लाइफ मस्त है, और स्पेशली ये जो यू नो 22 साल से बड़े वाले लोग हैं एंड 40 से जो कम उम्र के लोग हैं, ये लोग अपनी लाइफ को ना टू द फुलेस्ट इंजॉय करने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे ज़्यादा जो है प्रॉब्लम्स, परेशानी, स्ट्रेस जो है इन्हीं की लाइफ में होता है, और सबसे ज़्यादा ये इंजॉय भी यही करना चाहते हैं। सो अभी एक रीसेंट स्टडी आई है, पता तो ये हम लोगों को काफ़ी लंबे टाइम से ही है कि अब ये जो 22 साल से लेकर यू नो 39 के बीच के जितने भी लोग हैं ये अब अपनी खुशी पे पैसे खर्च कर रहे हैं, एंड खुशी इन अ सेंस ये जो है खिलौने लेने पर पैसे खर्च कर रहे हैं, चाहे वो हॉट व्हील्स हो, चाहे वो बारबीज हो, चाहे वो कोई कैरिकेचर हो स्पाइडरमैन का, आयरन मैन का। अब इस एज ग्रुप के लोग जो है ये इस तरीके की क्यूट चीज़ों पे या अपनी मनपसंद चीज़ों पे जो है खर्च कर रहे हैं, एंड इसी को अडल्ट मनी का यूज़ जो है वो कहते हैं। मतलब कोई हमें रोकने टोकने वाला नहीं है, हम अपनी मर्जी से अपने पैसे ऐसी चीज़ पे खर्च कर रहे हैं जो हमारे काम नहीं आएगी लेकिन बस हमारे दिल को सुकून देगी, हमारे दिल को खुशी देगी। सिपर्स भी इसीलिए जो है फेमस हो रहे थे, क्रॉक्स जो है वो इसलिए फेमस हो रहे थे, क्यूट डायरीज जो है वो भी इसीलिए इतनी ट्रेंड में है, लबूबू डॉल जो है वो भी यू नो सोशल मीडिया पे फ्लेक्स करने के साथ साथ लोग उसको कह रहे थे कि यार हम अपनी अडल्ट मनी को अपने दिल के हिसाब से खर्च करना चाहते हैं इसीलिए खरीद रहे हैं। वैसे ये तो स्टूपिड डिसीजन था, लेकिन छोटी बात यह है और एक मेन बात यह है कि 22 से लेकर 39 की एज वाले लोग जो है वो अब पैसे खर्च कर रहे हैं बचपन की यादों को फिर से जीने में, क्योंकि रिसर्चर्स का ये कहना है कि कहीं ना कहीं ये जो है अपने बचपन में ये सब काम नहीं कर पाए थे, इसीलिए अब जब ये पैसे कमा रहे तो ये काम करना चाहते हैं। आपका बस काम इतना सा है, आपको मुझे मैसेज करना है 3311063 पर और ये बताना है कि क्या आप अपनी अडल्ट मनी को ऐसी चीजों पर खर्च करना सेंसिबल समझते हो, क्या आप ऐसी चीजों पर खर्च करते हो जो आपके काम की नहीं है लेकिन बस आपके दिल को सुकून देती है, या आपके अंदर जो एक बच्चा रहता है, आपके दिल में जो एक बच्चा रहता है उसको कहीं ना कहीं सैटिस्फाई करती है। कूल सॉन्ग ऑफ द ईयर आ रहा है आपके रेडियो सेट्स पर, गाने का नाम है टेल मी। सो गाइज टेल मी कि आपको क्या लगता है, क्या आप ऐसी चीजों पे पैसे खर्च करेंगे। मैं हूं आपकी कशिश, 3311063 ये मेरा व्हाट्सएप वाला नंबर है, ऑडियो नोट भेज सकते हैं आप, मैसेजेस भेज सकते हैं आप, जल्दी कीजिए यार, देरी बिल्कुल मत कीजिए।
1: रेडियो ऑलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द आवर।
2: क्या बात है सर, क्या पर ये बात है, कूल सॉन्ग
0: आपकी कशिश के साथ कहते रहिए जी।

दिलेर मेहंदी जी की आवाज में ये ट्रैक आपने एंजॉय किया 106.3 रेडियो वाले पर। मैं हूँ आपकी कसुशन, शो आपके लिए लाइफ मस्त है लेकर आ गई हूँ। एंड हम बात कर रहे थे कि यार किस तरीके से आज कल के जो अडल्ट लोग हैं, नए नए अडल्ट हुए लोग हैं, वो किस तरीके से अपने पैसों का यानी अडल्ट मनी का इस्तेमाल कर रहे हैं फालतू चीज़ों को लेने में। और रिसर्च ये कहती है कि 22 से 39 की एज वाले लोग जो है वो उन चीज़ों पे खर्चा कर रहे हैं जो उन्हें कहीं ना कहीं बचपन में नहीं मिली। एंड मैंने इस पे थोड़ी सी रिसर्च जो है वो एआई के ज़रिए की और उसमें ये बताया गया है कि 45% लोग जो है, जो यंगस्टर्स हैं, वो जो उन्हें बचपन में खुशियां नहीं मिल पाई उनके लिए काम करते हैं, उनके लिए पैसे कमाने की कोशिश करते हैं ताकि वो जो है अपने बचपन के वो जो ख्वाहिशें थी उन्हें पूरी कर सकें। यू नो, अब मेरे पास इतने पैसे तो हैं कि मैं जो है जब चाहूँ तब एक चॉकलेट खरीद के खा सकती हूँ, मुझे कोई रोकने वाला नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं ये जो जिम में पैसे दिए हुए हैं वो मुझे रोक लेता है कि नहीं कशिश, पैसे हैं लेकिन इस पे तो खर्च नहीं करने। सो बड़े होते हैं हम जैसे जैसे तो काफ़ी सारी चीज़ें हमें रोकना शुरू कर देती हैं, लेकिन उन चीज़ों को, उन शक्तियों को पीछे छोड़ के जब आप अपने दिल के बच्चे को जीतने देते हो तो उसको आप अडल्ट मनी का दुरुपयोग जो है वो कह सकते हो। सो काफ़ी सारे लोग जो है अब कार्स कलेक्ट करते हैं, कार्स मतलब हॉट व्हील्स वाली कार, रिमोट कंट्रोल कार्स जो है वो करते हैं कलेक्ट। एंड लड़कियां भी काफ़ी सारे बार जो है अपने पार्टनर्स को जो है ऐसी चीज़ें गिफ्ट करते हैं, क्रोशे के बने हुए सॉफ्ट टॉयज़, क्रोशे के बने हुए फ्लावर्स, ये इस वक्त काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में है एंड लोग काफ़ी इसे यूज़ भी कर रहे हैं। काफ़ी सारे लोगों का मेरे पास मैसेज भी आया है और हमने इस पर पहले भी एक बार छोटा सा डिस्कशन किया था जहाँ पर लोगों ने यही कहा था कि हाँ कशिश देखो एक बार तो हमें लाइफ मिलती है, अब उसमें अगर हम पैसे कमा रहे हैं और हम खुद भी खर्चा भी ना करें, खुद के दिल को जो चीज़ें अच्छी लग रही हैं वही ना खरीदें, तो फिर जीने से कमाने से क्या मिलेगा, क्या मतलब है? फिर तो हम सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पूरी करते रह जाएंगे जैसे हमारे मम्मी पापा ने की। एंड हम भी उनसे यही क्वेश्चन करते हैं अक्सर कि आपने हमारे लिए क्या किया। बस तो काफ़ी बार जो है हम खुद से ये सवाल ना करें कि तुमने खुद के लिए क्या किया, उससे बेटर है कि ऐसे स्टूपिड जो है खर्चे थोड़े बहुत कर सको तो कर लो, उससे क्या है तुम्हें एक मोटिवेशन मिलता है कि हाँ ठीक है लाइफ में वो हम कर रहे हैं जो हमें हमेशा से करना था। फिलहाल जश्न इश्क का गाना गुडने मूवी से आ रहा है आपके रेडियो सेट्स पर, इसे एंजॉय कीजिए और आपकी कसूस के साथ कहते रहिए जी बिंदास।

विशाल मिश्रा शिल्पा राव की आवाज में ये ट्रैक आपने एंजॉय किया 106.3 रेडियो ऑलिव पर। मैं हूँ आपकी कशिश शो लाइफ मस्त आपके लिए लेकर आ गई हूँ। एंड अभी अभी एक चीज मैंने डिस्कवर की है कि जो इंस्टेंट जो आप फोटोज भेजते हो इंस्टाग्राम पे, उस पर अब आप वीडियोज भी भेज सकते हो, लेकिन वीडियो में ऑडियो नहीं आएगी। सो एक बार जरा ये फीचर चेक करके मुझे बताओगे आपको कैसा लग रहा है। पहले तो मैं इंस्टेंट वाले फीचर को ही जो है अडॉप्ट नहीं कर पा रही थी, और अब इन्होंने वेराइटी दे दी है कि वीडियो भी भेज सकते हो। 3311063 पर अगर मुझे बता दो कि आपको ये फीचर कैसा लगा जरा आकर, फिर फैशन की बात करेंगे और इस पर भी डिटेल में विस्तार में जो है चर्चा करेंगे। फिलहाल ऑल फ्रेश सॉन्ग ऑफ द आरआर ऐप के रेडियो सेट्स पर, छाप तिलक गाने का नाम है, एंजॉय करो और कहते रहो जियो बिंदास।

बचपन में वो जो कट मम्मी कराया करती थी ना जबरदस्ती, मतलब बार्बर के पास ले जाकर, जिसमें हम रोते थे चिल्लाते थे कि नहीं मम्मी ये वाला हेयर कट नहीं करवाना, अब लड़कियां अपनी मम्मी से लड़के वही हेयर कट करवा रही हैं। वेलकम बैक 106.3 रेडियो ऑलिव पर, मैं हूँ आपकी कशिश, शो आपके लिए लाइफ मस्त है लेकर आ गई हूँ। एंड आजकल बॉब कट जो है वो इतना ट्रेंड में हो रहा है, इतना ट्रेंड पे हो रहा है कि इंस्टाग्राम पे समझ ही नहीं आ रहा है कि कौन सी लड़की है। मतलब मुझे जो है यूजर नेम पढ़ना पड़ जाता है कि यार ये इन्फ्लुएंसर अलग है क्या, क्योंकि सबके कपड़े सेम, सबके बाल सेम, सबके मेकअप सेम, कुछ डिफरेंस रह ही नहीं गया। सो बॉब कट पे आज हम बात कर रहे हैं, वही कटोरा कट जो मम्मी हमारा स्कूल में कराया करती थी वो इस वक्त काफी इन ट्रेंड चल रहा है। सो अगर आप जो है किसी से मूव ऑन करने के लिए अपना हेयर कट कराने का सोच रहे हैं तो बॉब कट जो है एक ऑप्शन हो सकता है, जहां पे आपका लुक पूरी तरीके से बदल सकते हैं आप। बॉब कट इज अ गुड ऑप्शन विथ सम बैंग्स, इस वक्त काफी चल रहा है। अगर आपके बाल थोड़े से वेवी हैं या थोड़े से कर्ली हैं तो ये वाला जो हेयर कट है आप पे बहुत अच्छा लगने वाला है। लेंथ देखिए बॉब कट की वैसे तो बहुत छोटी होती है, पर आप अपने हिसाब से थोड़ा एडजस्ट करेंगे तो बहुत बढ़िया हेयर कट निकल के बाहर आएगा। 3311063 ये मेरा व्हाट्सएप वाला नंबर है, इस पर आप कॉल करके मुझे बता सकते हैं कि यार आप कौन सा हेयर कट प्रेफर करोगे, बॉब कट करोगे नहीं करोगे, लंबे बाल पसंद है छोटे बाल पसंद है। बातचीत जो है जारी रखेंगे, आकर एक मूवी रिकमेंड करने वाली हूँ आपको। सो स्टे ट्यून रहो और आपकी कशिश के साथ कहते रहो जियो बिंदास।

0: सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM.
1: Hello to all the listeners of Radio Olive

0: देखिए वैसे तो मेरा आपको कोई भी मूवी रिकमेंड करना बनता नहीं है क्योंकि मैं आजकल कोई नए टाइप का कंटेंट देख ही नहीं रही हूँ। मैं इतनी कंफर्टेबल हो गई हूँ रोम कॉम मूवी में यानी रोमांटिक कॉमेडीज में कि मैं कोई और टाइप का जो कंटेंट है वो कंज्यूम ही नहीं कर रही हूँ। वेलकम बैक 106.3 रेडियो ऑलिव पर, मैं हूँ आपकी कशिश एंड शो आपके लिए लाइफ मस्त लेकर आ गई हूँ। और एक और रोम कॉम यानी रोमांटिक कॉमेडी रिकमेंडेशन मैं आपके लिए लेकर आ गई हूँ। मूवी ज़्यादा पुरानी नहीं है, करीना कपूर और इमरान खान की एक बहुत ही ब्यूटीफुल मूवी एक मैं और एक तू, जिसमें वो वाला गाना है आंटी जी गेट अप एंड डांस। ये मूवी जो है ये आपको एक बार जरूर से देखनी चाहिए और स्पेशली अगर आप अपने पार्टनर के साथ बैठकर देखेंगे तो आपको ये मूवी ज़्यादा अच्छी लगी क्योंकि बातों बातों में हंसी मजाक में कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स जो हैं ये मूवी एड्रेस कर जाती है कि आपको पता ही नहीं चलता। तो हंसी मजाक में प्रॉब्लम्स भी सॉल्व हो जाएंगी, मैटर भी सॉल्व हो जाएगा एंड मूवी देखने का मजा आ जाएगा। मैं इसे 5 में से स्ट्रॉन्ग 4 स्टार्स जो है वो देना चाहूंगी। बाकी अगर आपने ये मूवी देखी है तो 3311063 पर आकर मुझे बता दो कि ये मूवी आपको कैसी लगी एंड अगर कोई मूवी रिकमेंडेशन आपके पास है तो वो भी आप मुझे बता सकते हो। मैं हूँ आपकी कशिश, मुलाकात होगी थोड़ी सी देर में। स्टे ट्यून रहिए और कहते रहिए जियो बिंदास।
1: रेडियो ऑलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द आवर।

वैसे तो देखिए हमारे यहाँ टेलर को जो है काफी इंतजार रहता है शादियों के सीजन का, लेकिन यहाँ पर उल्टा था। हमारे यहाँ पर जो है टेलर की शादी का सबको इंतजार था। वेलकम बैक 106.3 रेडियो ऑलिव पर, मैं हूँ आपकी कशिश एंड शो आपके लिए लेकर आ गई हूँ लाइफ मस्त है। एंड किसी बहुत ही स्पेशल इंसान ने शादी कर लिया, ये मैं आपको काफी टाइम से जो है बता रही थी, काफी टाइम मतलब जब से शो शुरू हुआ था हम इसी बारे में बात कर रहे थे कि किसी बहुत स्पेशल इंसान ने जो है शादी कर ली है मेडिसन स्क्वेयर गार्डन पे। हाँ जी, सो हम सब की प्यारी राज दुलारी टेलर स्विफ्ट की शादी जो है कल हो गई, कल यानी 3 जुलाई को उन्होंने शादी कर ली। एंड यार कितना यू नो ड्रीमी सा लग रहा था सब कुछ जो ट्रेविस के साथ टेलर ने 25 अगस्त को आई थिंक इंगेजमेंट की थी पिछले साल, एंड अब फाइनली उनकी शादी हो गई है। मोस्ट अवेटेड वेडिंग, एंड पूरी आज मेरा फीड जो है वो सिर्फ इसी गाने से भरा हुआ है, रोमियो सेव मी समवेयर वी कैन बी अलोन। ओके, मैं गा नहीं सकती लेकिन मैं खुश बहुत हूँ टेलर जी के लिए, बहुत ज़्यादा खुशी, बहुत ज़्यादा दुआएं, और रेडियो ऑलिव की तरफ से एक अमेजिंग गाना भी उनकी नज़र हम करना चाहते हैं। सो ये अमेजिंग गाना इन्जॉय कीजिए, और बाकी टेलर और ट्रेविस की शादी की फोटोज आपने देखी है नहीं देखी है मुझे बता दीजिए। फिलहाल अमेजिंग वाला गाना आपके रेडियो सेट्स पर, इन्जॉय कीजिए, कहते रहिए जियो बिंदास।

देखिए जी, मन तो नहीं है ये कहने का, लेकिन आपको चाचा बाय बाय बोलकर यहाँ से जाने का वक्त आ गया है। वेलकम बैक, मैं हूँ आपकी कशिश। शो आप मेरे साथ लाइफ मस्त है, एंजॉय कर रहे थे अभी तक, लेकिन अब मुझे जाना होगा। कल वापस लौट कर सेम टाइम पर मैं वापस आ जाऊंगी, यानी 10 से 1 आपकी लाइफ को और ज्यादा मस्त बनाने के लिए हम यहीं रेडियो ऑलिव पर जुटेंगे। लेकिन तब तक अगर आपको मेरी बहुत सारी याद सताए तो 3311063 पर आकर मुझे मैसेज कर सकते हो। एंड साथ में इंस्टाग्राम भी है radioolive.qa, वहां पर आकर भी आप हमारी रील्स एंजॉय कर सकते हो और रेडियो ऑलिव के सभी आरजेस को जाकर फॉलो भी कर सकते हैं। सो यार, देरी किस बात की है, जल्दी से अपना फोन उठाओ, व्हाट्सएप करो, इंस्टाग्राम पे जाकर हमें फॉलो करो, और बाकी अगर फिर भी मेरी याद आए तो इंतजार करो। अमेजिंग वाले गाने तो मैंने आपके लिए देखो प्लेलिस्ट में लगा ही दिए हैं, इन गानों को एंजॉय करते रहो। और देखो, जो मैं हर रोज कहती हूँ वही कहूंगी, गाड़ी धीरे धीरे हौले हौले चलाना, खाना खाते रहना, पानी पीते रहना, हाइड्रेशन का ध्यान रखना और सनस्क्रीन लगाना, और कहते रहना जियो बिंदास। Radio on.

0: You are listening to Radio Olive 106.3 FM Jio Bindas.
1: हेलो लिसनर्स, मेरा नाम है राजपाल यादव और आप सुन रहे हैं कतर का नंबर वन हिंदी रेडियो स्टेशन रेडियो ऑलिव 106.

0: ऑलिव रिचार्ज आरजे तनीशा के साथ हर दोपहर 2 से 5 रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम पर जियो बिंदास।
1: This hour is brought to you by.
2: इस वेकेशन सीजन सरप्राइज करें अपने लव्ड वंस को मलाबार गोल्ड एंड डायमंड के गिफ्ट्स के साथ पाए फ्री कैश वाउचर्स हर डायमंड और प्रेशियस जेम ज्वेलरी परचेस पर और एक्सचेंज करें अपनी पुरानी गोल्ड ज्वेलरी वो भी बिना किसी लॉस के।

0: काविश और कुरातुलन बलोच के आवाज में, व्हाट अ ब्यूटीफुल ट्रैक। और क्या है, अभी तो आए यार, जाने की बातें करने लग गए, हद हो गई है यार।
1: अभी अभी तो आए हो,
0: अभी बिल्कुल नहीं जाना।
1: अभी तो
0: शुरुआत है मेरी जान, बहुत सारी बातें करनी है। यू आर लिसनिंग टू रेडियो ऑल एफ 106.3 FM, तनीषा और सुदेव आपके साथ। ऑलिवरी जॉर्ज चल रहा है, अ वेरी गुड आफ्टरनून।
1: दो मिनट के लिए मेरे मुंह से गुड मॉर्निंग निकलने वाला था।
0: आदत
1: Well,
0: बहुत बढ़िया बढ़िया गाने लाइंड अप है अभी, एक तो सुनी लिया, बाकी और इस घंटे में क्या क्या कमाल सुनने वाले हैं
1: बताइए जरा
0: जी।
2: लग रहा से अब मोहब्बत हुई है मुझे,
0: अरिजीत सिंह की आवाज में, लाइफ इन अ मेट्रो से, नहीं नहीं नहीं मेट्रो इन दिनों से,
1: मेट्रो इन दिनों से,
0: यस। और फिर सुखविंदर सिंह भी बैठे हैं। जब ये सब हो जाता है उसके बाद क्या होता है,
1: क्या होता है
0: वो बताने के लिए भी अरिजीत सिंह बैठे हैं। एग्जैक्टली, एंड देन दिस ब्यूटीफुल वन, ये थोड़ा नॉस्टैल्जिया में पहुंचा देगा। कमाल गाने यार, पूरे घंटे बहुत ही अमेजिंग अमेजिंग गाने लाइन अप है, और बहुत सारी हम बातें करने वाले हैं
1: जी, बिल्कुल
0: है ना, चटपटी मजेदार,
1: बिल्कुल बढ़िया बातें करेंगे हम। उसके साथ साथ मैं बता दूं कि हमारे ऑफिस में एक हमारे कलीग हैं जो इंडिया से आए, तो बिल्कुल बढ़िया यार,
0: अरे मजा ही आ गया यार,
1: मजा आ गया।
0: एग्जैक्टली, तो बहुत सारा हमने खा भी लिया है, इधर पेट भी फुल है, अब हम
1: मेरा नहीं है वैसे, थोड़ा है बचा है,
0: हमेशा गुंजाइश होती है इसके, तो चलो कोई बात नहीं, अभी दिल भरने की बात आई है बातें करके,
1: क्या बात
0: जी हाँ, और कमाल के गाने सुन के। सो स्टे ट्यून्ड एंड जियो बिंदास मेरी जान।

0: ऑलिव रिचार्ज आरजे तनीशा के साथ रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम पर जियो बिंदास।
1: This hour is brought to you by.
2: इस वेकेशन सीजन सरप्राइज करें अपने लव्ड वंस को मलाबार गोल्ड एंड डायमंड के गिफ्ट्स के साथ पाए फ्री कैश वाउचर्स हर डायमंड और प्रेशियस जेम ज्वेलरी परचेस पर और एक्सचेंज करें अपनी पुरानी गोल्ड ज्वेलरी वो भी बिना किसी लॉस के।

0: तनिषा
1: मेट्रो इन दिनों से अरिजीत सिंह की आवाज में कायदे से ओनली ऑन रेडियो 106.3 एफएम
2: लाइफ इन मेट्रो या मेट्रो इन दिनों
1: हम जज नहीं कर सकते
2: जी, बिल्कुल सही बात कही आपने, दोनों अलग मूवी है। और मुझे स्पेशली अभी जो गाना हमने सुना अरिजीत की आवाज में, मूवी में ये गाना आता है एंड में और वो पेपॉन की आवाज में आता है।
1: चार वर्जन है और चारों कमाल है।
2: अच्छा, इससे मुझे याद आया, अभी एक गाना है जो तनिषा लूप में सुनती जा रही है।
1: ओ यस।
2: जैसे तू है पास मेरे, हाँ। तेरे पास में मैं वापस आऊंगा मूवी का बहुत ही प्यारा गाना है,
1: बहुत सुंदर।
2: दीपाली ने गाया ना वो?
1: यस, दीपाली से। हाय।
2: तो इस गाने का एक वर्जन जो है हरिचरण ने गाया है, ठीक है। हरिचरण, जो लोग ए आर रहमान के गाने सुनते हैं स्पेशली तमिल भी सुनते हैं तो उनको पता होगा हरिचरण कौन है। बहुत ही फैंटास्टिक एक सिंगर हैं और बहुत सारे ए आर रहमान के गानों में जो है वो थे। तो उनका एक वर्जन सुना मैंने आज सुबह और मुझे एकदम से काफ़ी अच्छा लगा। मतलब कुछ गाने ऐसे होते हैं जो जब कोई और भी गाता है तो हमें एक डिफरेंट लेयर अनलॉक हो जाता है, ऐसा होता है। तो एक गाना ऐसा जो आपने कभी सुना होगा और आपको लगता है कि यार ये वाला गाना, फॉर एग्जाम्पल एक टाइम पे ट्रेंड निकला था जब सैयारा आई थी, सैयारा का जो टाइटल ट्रैक है वो किशोरदा की आवाज में किसी ने एआई
1: ट्रैक में एआई का ज्यादा इस्तेमाल करते हुए
2: इस्तेमाल हो रहा था। तो अभी देखिए हमारे पास तो टेक्नोलॉजी है, एक गाना इस जमाने का जो आप चाहोगे कि किशोरदा गाए या फिर रफी साहब गाए, ऐसा कौन सा होगा जरा हमें बताइए। और ऐसा एक गाना पुराना जो आप चाहोगे कि अभी के नए सिंगर्स जो है वो गाए, बताइए 3311 जो। अरे भाई टफ क्वेश्चन ही पूछते हैं, हम खुद टफ क्वेश्चन के सामने वो हो जाते थे, इजी क्वेश्चन अटेम्प्ट ही नहीं करते थे।
1: सही बात है, तभी ये हाल है।
2: दोनों का जवाब नहीं पता।
1: 3311106 नंबर मैसेज कीजिए और सुनते रहिए रेडियो ऑलम जियो बिंदास
2: मेरी जान।
3: रेडियो ऑलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द

0: सुनते हैं नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM।
1: Fresh fish on the grill, slow cooked mandi, perfectly spiced prawns, and that special chutney. No noise, no drama, just seafood done right. BBQ fish, crabs, prawns, crafted with patience, served with pride. Nanatal Bahar, the ultimate Katri adventure. Souq Waqif, Alkhor.
0: Olive Recharge Radio Olive 106.3 FM par Jio Bindas
2: Olive Recharge
3: This hour is brought to you by
4: इस वेकेशन सीजन सरप्राइज करें अपने लव्ड वंस को मलाबार गोल्ड एंड डायमंड के गिफ्ट्स के साथ पाए फ्री कैश वाउचर्स हर डायमंड और प्रेशियस जेम ज्वेलरी परचेस पर और एक्सचेंज करें अपनी पुरानी गोल्ड ज्वेलरी वो भी बिना किसी लॉस के

0: तनिषा
1: एतराज मूवी से अदनान सामी और सुनिधि चौहान की आवाज में गीला गीला
2: यार सुनो मुझे एक बात बताओ, आपको किस बात का एतराज है?
1: हाँ, मुझे किसी बात का एतराज नहीं है।
2: जनरली किसी बात का एतराज नहीं,
1: नहीं मतलब वो तो टाइम टू टाइम डिपेंड्स ऑन द थिंग्स यू नो।
2: कोई एक एग्जांपल दीजिए हमें जरा, जनता जवाब मांगती है। द नेशन वांट्स टू नो,
1: डू नॉट पुट मी ऑन स्पॉट लाइक दैट।
2: आई एम नॉट पुटिंग यू ऑन अ स्पॉट।
1: नो,
2: डोंट इंटरप्ट मी व्हेन आई एम टॉकिंग। कैन आई कट यू ऑफ प्लीज? जो इन जिसका मैंने,
1: आई विल कट ऑफ योर माइक। ओके,
2: अरे देखो मैं ये पूछना चाहूंगा कि मैंने जिसके भी आवाज निकालने की या फिर जिसके भी स्टाइल को कॉपी करने की कोशिश की थी, अगर लोग गेस कर पा रहे हैं,
1: कर ही लिया होगा,
2: मैसेज कर दीजिए 3311063 पर।
1: ऑल्सो
2: हाँ,
1: कतर मेट डिपार्टमेंट ने बोल दिया है
2: क्या
1: कि
2: बोला है?
1: जो डर्टीएस्ट पीरियड ऑफ समर है वो शुरू हो चुका है। 13 डेज तक चलने वाला है ये, और बहुत इंटेंस हीट होगी जैसे अभी नहीं हो रही है, और साथ में फ्रीक्वेंट डस्ट स्टॉर्म्स भी होने वाले हैं। सो जरा अपना ख्याल रखिएगा मेरी जान, स्टे हाइड्रेटेड, लाइट खाना खाएं, ऐसे फ्रूट्स खाएं जिसमें वाटर कंटेंट ज्यादा हो।
2: लोग सोच रहे होंगे कि अभी तक तो मैं मिट्टी खाने वाला था, तनिषा ने बोल दिया मैं पानी पीऊंगा।
1: दे नो दे आर वेरी स्मार्ट, दे आर डूइंग ऑल दोस थिंग्स, पर कभी कभी हम इतने बिजी हो जाते हैं लाइफ में कि हम ये छोटी चीजें भूल जाते हैं यार।
2: सो आई
1: एम जस्ट हियर टू रिमाइंड देम बिकॉज आई केयर।
2: सार्कास्म इज लाइक इलेक्ट्रिसिटी इन सर्टेन प्लेसेस।
1: सो इफ यू नीड टू यस, सेंडिंग एन अमेजिंग ट्रैक सुखविंदर सिंह की आवाज में, स्टे ट्यून्ड एंड ट्रू विद अस।

0: listening to Radio Olive 106.3 FM.
1: इस वेकेशन प्यार से हमारा इंतजार करने वाले अपनों को एक गोल्डन सरप्राइज क्यों ना दे। मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स के गोल्डन समर ऑफर के साथ डायमंड एंड प्रेशियस जेम ज्वेलरी खरीदने पर पाइए फ्री कैश वाउचर्स। अपने पुरानी गोल्ड ज्वेलरी को एक्सचेंज कीजिए विदाउट एनी लॉस। और अब विद द इंपोर्ट ड्यूटी रिविजन इन इंडिया यू कैन नाउ सेव अप टू 15% ऑन गोल्ड प्राइसेस हियर इन जीसीसी। विजिट मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स टुडे।
2: Olive Recharge, Radio Olive 106.3 FM par Jio Bindas.
3: Olive Recharge.
4: This hour is brought to you by.
5: इस वेकेशन सीजन सरप्राइज करें अपने लव्ड वंस को मलाबार गोल्ड एंड डायमंड के गिफ्ट्स के साथ। पाए फ्री कैश वाउचर्स हर डायमंड और प्रेशियस जेम ज्वेलरी परचेस पर और एक्सचेंज करें अपनी पुरानी गोल्ड ज्वेलरी वो भी बिना किसी लॉस के।

0: तनिषा।
1: आप सुन रहे हो रेडियो ऑलिव 106.3 FM, मैं हूं आपका मेजबान सुदेव और मेरे साथ है हंसती हुई खिलखिलाती हुई पता नहीं क्यों यहां पे बैठ के ऐसे मुंह फुला के मुझे घूरती हुई
2: तनिषा।
1: अरे तनिषा मैडम, मैं एक बात बताना चाहूंगा आपको।
2: क्या?
1: मैं चाहूंगा कि ये लोग जो हैं सुने मेरी बात को।
2: जी बताएं, सुन लेंगे, बोलना।
1: दिल का खिलौना बना के खेल गई वो।
2: ओह माय गॉड,
1: दिल का खिलौना बना के खेल गई वो। बाकी राइमिंग नहीं आ रही तो न्यूज बता दो प्लीज।
2: खिलौने की बात करनी थी। कतर टॉय फेस्टिवल इज हियर मेरी जान।
1: वाओ, व्हाट अ कनेक्शन, ये है क्रिएटिविटी।
2: And this is the fourth edition. कतर कैलेंडर ने ऑफिशियली ओपन किया इसको 1st of July को। 31st July तक ये चलने वाला है। और इस बार का जो थीम है वो है मोर टू इमेजिन अ होल वर्ल्ड ऑफ फन। और DECC में हो रहा है। और भाई साहब इतनी सारी जोन्स हैं, 7 जोन्स हैं। और सबकी अपनी थीम है।
1: 7 यानी कि तारा फॉर अ रीजन।
2: राइट।
1: मैं अगले जब हम आएंगे गानों के उस पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन बताना चाहूंगा, मगर अभी बताइए आप।
2: इंडीड, ठीक है, बताइएगा। और 31st July तक ये चलने वाला है, तो डू टेक योर किड्स देयर, क्योंकि बहुत सारी फन एक्टिविटीज हैं उनके लिए वहां पर। एंड 33 एक्टिविटी कॉर्नर्स आपको मिलेंगे, 14 लाइव शोज डेली हो रहे हैं।
1: ओके,
2: तो 31st July तक ये चल रहा है, बहुत सारे दिन है, वीकेंड प्लान कर सकते हैं, वीक के बीच में वक्त मिले आप तब भी जा सकते हैं।
1: बिल्कुल बिल्कुल जाइए, मैं तो कहता हूँ यार छुट्टी लीजिए ऑफिस से, क्या करेंगे ऑफिस में बैठ के काम करके, एक बार थोड़ा ब्रेक तो बनता ही है।
2: सही बात,
1: तो आप सीधा जाइए, आप चेकआउट कीजिए टॉय फेस्टिवल को। अभी फिलहाल यहाँ पे हम गाना प्ले करते हुए आगे बढ़ते हैं, और 7 याद रखना
2: जी,
1: बहुत ही बड़ी ऑब्जर्वेशन बताऊंगा मैं
2: जी। बिंदास
1: मेरी जान।
0: रेडियो ऑलिव पर फ्रेश फ्रेश फ्रेश फ्रेश फ्रेश है ये गाना, फ्रेश है, फ्रेश सॉन्ग ऑफ द ईयर ये गाना।

0: सोचो अगर सेविंग से आप बन जाओ मिलियनेयर, कमर्शियल बैंक के सेव एंड विन कैंपेन में भाग लीजिए।
1: हर 10,000 कतरी रियाल सेविंग ग्रोथ पे मिलेगा एक कूपन, या सिर्फ 50% सैलरी सेव करो एंड एंटर द ड्रॉ।
0: न्यू कस्टमर हो तो अकाउंट खोलो और फर्स्ट सैलरी ट्रांसफर पे गारंटीड चांस टू विन,
1: और 9 महीने की कंसिस्टेंट सैलरी ट्रांसफर के साथ मेगा ड्रॉ में एंट्री पक्की।
0: तो फिर सोचना क्या, अगले मिलियनेयर आप हो सकते हो। आज ही शुरू करो सेविंग्स, कमर्शियल बैंक, सेव एंड विन।

0: क्या आप एक प्रोफेशनल इलेक्ट्रीशियन या प्लम्बर हैं? तो अब अपनी स्किल्स को प्रूव करने का वक्त आ गया है। हासिल कीजिए एक ऑफिशियल कहरामा सर्टिफिकेशन, पाइए अपना लाइसेंस जो आपके लिए कतर में नए जॉब अपॉर्चुनिटीज के दरवाजे खोल देगा, एक ऐसे सर्टिफिकेट के साथ जो आपकी ब्रिलियंस और क्वालिटी स्टैंडर्ड्स का कमिटमेंट शो करता है। इस मौके को हाथ से जाने मत दीजिए, अभी रजिस्टर कीजिए और बन जाइए अपने फील्ड के टॉप कॉन्ट्रैक्टर्स और टेक्नीशियंस में से एक। बस विजिट कीजिए कहरामा की वेबसाइट www.km.qa और खुद को रजिस्टर कीजिए। सर्टिफाइड बनिए, सर्टिफाइड के साथ बनिए।
1: लगा और हो जा रिचार्ज।
2: ऑलिव रिचार्ज, रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम पर जियो बिंदास।
3: This hour is brought to you by.
4: इस वेकेशन सीजन सरप्राइज करें अपने लव्ड वंस को मलाबार गोल्ड एंड डायमंड के गिफ्ट्स के साथ। पाए फ्री कैश वाउचर्स हर डायमंड और प्रेशियस जेम ज्वेलरी परचेस पर, और एक्सचेंज करें अपनी पुरानी गोल्ड ज्वेलरी, वो भी बिना किसी लॉस के।

0: Tanisha.
1: You're listening to Radio 106.3 FM, Tanisha aur Sudhir aapke saath. All of you are chal rahe. And what about number 7?
2: Number 7 ke bare mein pehle to hum jante hain ki bahut hi badhiya number hai. Dhoni ka number hai.
1: Sahi baat hai.
2: Ronaldo ka number hai. मगर जापान इस नंबर को बहुत सीरियसली ले रहा है.
1: एंड
2: जापान हम जानते हैं फीफा वर्ल्ड कप से बाहर हो चुकी है. ब्राजील के साथ खेलने के बाद वो बाहर हो गई. मगर मेरी बात ध्यान से सुनिएगा. जापान के फुटबॉल एसोसिएशन ने जो है मिशन 2050 रखा है.
1: ओके
2: 2050 में वो वर्ल्ड कप जीतेंगे करके. 2050 क्यों चुना? क्योंकि 2+0+5+0=7. वो नहीं, सुनो मेरी बात. अब जापान में रजनीकांत के बहुत फैंस हैं. रजनीकांत कहाँ रहता है? चेन्नई में. चेन्नई की टीम का सबसे बड़ा प्लेयर कौन है? धोनी. तो धोनी को ट्रिब्यूट देने के लिए जापान 2050 जो है रखा है. मैं सारे अपने जापानीज भाइयों को बोलूंगा कि ताला फॉर रीजन.
1: बट आई वॉज सींग द न्यूज ऑन रील्स बनी थी काफी.
2: Okay.
1: कि जब जापान की टीम आउट हुई तो सब लोग बहुत दुखी हो गए थे क्योंकि आफ्टर देयर मैच वो सारा लॉकर रूम और इवन द
2: फैंस
1: वो सब कुछ क्लीन करके जाते थे. नाउ द क्लीनर्स आर लाइक कि भाई सब बहुत मेहनत बढ़ जाएगी. अब तो
2: यार काम बढ़ जाएगा. और अमेरिका में टिप भी नहीं देंगे यार, क्योंकि बाकी देशों से आए हैं ना लोग.
1: हाँ.
2: वो लोग टिप नहीं देते. तो मैंने देखा था कि बहुत सारे यूरोपियंस जब भी अमेरिका में लोग आके ऐसे टिप मांगते हो कहते हैं कि वी आर नॉट टिपिंग यू, आस्क योर एम्प्लॉयर टू पे यू वेल. तो उन्होंने नया टेक्निक निकाला. उन्होंने बिल में 20% टिप का ऐड करके बिल दिया.
1: ये तो जबरदस्ती वाली बात.
2: वही
1: क्रेजी.
2: अब नो कमेंट्स एनीवे. क्या कर सकते हैं.
1: सेंडिंग एन अमेजिंग ट्रैक. स्टे ट्यून्ड एंड जीवन दास.

0: ऑलिव रिचार्ज रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम पर जियो बिंदास ऑलिव रिचार्ज।
1: This hour is brought to you by.
2: इस वेकेशन सीजन सरप्राइज करें अपने लव्ड वंस को मलाबार गोल्ड एंड डायमंड के गिफ्ट्स के साथ। पाए फ्री कैश वाउचर्स हर डायमंड और प्रेशियस जेम ज्वेलरी परचेस पर और एक्सचेंज करें अपनी पुरानी गोल्ड ज्वेलरी वो भी बिना किसी लॉस के।
0: रेडियो

0: Tanisha.
1: Tanisha. You're listening to Radio Olive 106.3 FM. Tanisha, आपके साथ Olive Recharge चल रहे हैं यहाँ पर और सुदेव भी है जो कि फोन में लगा हुआ है.
2: मैं कहाँ लगूँ फिर? कहाँ लगूँ मैं?
1: बात करने आए हम.
2: बिल्कुल बात करने के लिए फोन चाहिए ना हमें. बात करते हैं ध्यान से सुनो.
1: By the way, लेटिन का सेकंड एपिसोड आ गया है.
2: मैं एक्चुअली वही यूट्यूब में देखने वाला था कि भाई उसके एपिसोड के कमेंट्स क्या हैं.
1: अच्छा.
2: तो मेरा एक फंडा रहता है कि हमेशा कोई भी वीडियो अगर देखना और तुम्हारे पास टाइम नहीं है और एकदम से उसके बारे में थोड़ा अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करना, तो मैं कमेंट सेक्शन चेकआउट करता हूँ कि जनता का एक माहौल कैसा है उसके लिए. तो लेटिन का नया वीडियो मैंने देखा नहीं है जिसमें कीकू शारदा है,
1: चंदन प्रभाकर
2: ये सब हैं. तो एक्साइटेड
1: कपिल शर्मा की टीम ले आया वो अपने शो पे.
2: उसमें एक और खास बात ये है, शायद आपने देखा होगा, एक लड़की है बहुत फेमस हुई थी बीच में, विजय देवरकोंडा का एक मूवी था, उसका एक गाना उन्होंने आई लाइक टू लिसन टू म्यूजिक व्हाइल आई एम स्टडीइंग करके उसका बनाया था, वो भी आई है उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए. हाँ, वो भी आई है.
1: देव देव करके समथिंग द सॉन्ग वाज
2: तेलुगु में
1: मला. यस यस, आई रिमेंबर दैट.
2: तो वो वाला मुझे नहीं आती तेलुगु, तो कुछ गलती होगी तो माफ कर देना प्लीज. बट या तो वो भी है इस बार इस एपिसोड में एज अ कंटेस्टेंट.
1: वाओ, फन होगा.
2: बिल्कुल बिल्कुल फन होगा. तो मैं तो एक्साइटेड हूँ, देखना है मुझे, जानना है.
1: एंड आई हैव बीन लाइक इंस्टाग्राम पे ऐसे वायरल हो रहा है और हर दूसरा वही है फीड में रील या फिर पोस्ट कि चंदन प्रभाकर ही आउटशाइंड समय आल्सो.
2: क्या बात कर रहे
1: हैं, कपिल के शो पे उस बेचारे को इतना स्पेस नहीं दिया जाता है.
2: हाँ.
1: बट यहाँ पे कमाल कर दिया.
2: देखिए, इंसान को खुलने का एक वो मौका चाहिए होता है कि जब उसे खुल के परफॉर्म करने का, जैसे कि पिछले एडिशन में रघु आए थे हमारे.
1: हाँ.
2: इंडिया के सबसे फेमस पीसफुल रियलिटी शोज में से एक, रोडीज वो होस्ट करते थे. तो वो जब तन्मय रिएक्ट्स में आए तो बोल रहे थे कि यार मुझे ना काफी अच्छा लगा बिकॉज आई गॉट टू अनलीश माई सेल्फ आफ्टर लॉन्ग टाइम. तो इससे हमें ये पता चलता है कि हर एक इंसान का ना एक इनहेरेंट फन मोड होता है.
1: Exactly.
2: वो फन मोड जब तक बाहर नहीं आता ना तो इंसान
1: सराउंडिंग्स पे भी मैटर करता है कि वो बाहर आ सकता है या नहीं
2: आ सकता है.
1: Right.
2: तो उनको मौका मिल गया, वो खुल गए, वही रहता है, मौका चाहिए होता है. और मुझे लगता है समय भी यही चाहता है कि जो क्वर्की लोग हैं, फंकी लोग हैं, उनको एक स्पेस मिले जहाँ पे लोग उन्हें जज करें मगर उस जजमेंट में भी मजा आए.
1: करेक्ट,
2: समझ गए,
1: सही बात है.
2: वही,
1: ऑन दैट नोट,
2: वैसे आप कब जाओगे लेटेंट में?
1: यार मुझे कॉल तो आया था पर मैं बहुत बिजी हूँ तुझे पता है तो.
2: अच्छा, किसने कॉल किया था, बलराज ने या समय ने?
1: समय
2: ने कॉल किया था.
1: समय से बात होती रहती है मेरी.
2: अच्छा, समय से बात होती रहती है. मैं आपकी घड़ी की बात नहीं कर रहा हूँ,
1: घड़ी
2: समय रहना की बात कर रहा हूँ.
1: गाना भेज यू बैरन ओनली ऑन रेडियो 106.3 FM. जी जान.

0: ऑलिव रिचार्ज आरजे तनीशा के साथ हर दोपहर 2 से 5 रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम पर जियो बिंदास।
1: This hour is brought to you by.
2: इस वेकेशन सीजन सरप्राइज करें अपने लव्ड वंस को मलाबार गोल्ड एंड डायमंड के गिफ्ट्स के साथ पाए फ्री कैश वाउचर्स हर डायमंड और प्रेशियस जेम ज्वेलरी परचेस पर और एक्सचेंज करें अपनी पुरानी गोल्ड ज्वेलरी वो भी बिना किसी लॉस के।

0: Denisha.
1: Denisha. You're listening to Radio Olive 106.3 FM. Denisha और सुदेव के साथ हैं आप. Olive chat चल रहे हैं यहाँ पर.
2: आ गया हूँ मैं.
1: जी और वक्त हो चुका है.
2: जी.
1: सुदेव की शक्ल का रंग बदलते हुए देखा है मैंने ऐसे चंद सेकंडों में.
2: किस्मत बदल दी देखे हैं. ये जग बदलदा देखे हैं.
1: So, आज का सवाल.
2: ये मैं एक्चुअली इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि मैंने एक बहुत ही इन्फॉर्मेटिव रील में देखा था कि हम स्लो बात करेंगे, डीप वॉइस में बात करेंगे, तो लोगों को लगेगा हमारे पास बहुत अथॉरिटी है, जो कि है नहीं. बट
1: कोशिश कर सकते हैं आप.
2: कोशिश कर सकते हैं.
1: सो द क्वेश्चन फॉर टुडे,
2: यस प्लीज, यस,
1: अगर आपका पार्टनर बीमार हो जाए तो
2: अरे मुझे पता है
1: क्या कहेंगे.
2: मुझे पता है इसका जवाब. पता है मुझे.
1: हाँ तो तूने नहीं देना है. आपने
2: देना है.
1: 3311063 पर मैसेज कीजिए या फिर कॉल कर दीजिए.
2: मैं कैरेक्टर ब्रेक कर दिया था. क्यों नहीं देना है.
1: या फिर कॉल कर दीजिए 4444106063. मैं भी ना इसकी ऐसी रैंडम बातें सुन के एकदम से ध्यान देने लग जाती हूँ, फिर पता चलता है ये तो बकवास ही कर रहा है.
2: तनिषा के साथ यही होता है मेरा.
1: श्योर. तनिषा हाँ तो इंतजार कर रहे हैं आपके मैसेज का. फटाफट से आइए बताइए और चुनते रहिए रेडियो ऑल अप.

0: ऑलिव रिचार्ज आरजे तनीशा के साथ रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम पर जियो बिंदास।
1: This hour is brought to you by.
2: इस वेकेशन सीजन सरप्राइज करें अपने लव्ड वंस को मलाबार गोल्ड एंड डायमंड के गिफ्ट्स के साथ पाए फ्री कैश वाउचर्स हर डायमंड और प्रेशियस जेम ज्वेलरी परचेस पर और एक्सचेंज करें अपनी पुरानी गोल्ड ज्वेलरी वो भी बिना किसी लॉस के।

0: तनिषा
1: मोहित चौहान की आवाज में चट्टे बट्टे फ्रॉम द मूवी चिल्लर पार्टी
2: ओके
1: ओनली ऑन रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम तनिषा सुदेव के साथ हैं आप ऑलिव चौहान चल रहे हैं यहाँ पर
2: सवाल पूछा था तनिषा ने अपने बहुत ही इंटेलेक्चुअल सेगमेंट में
1: लाइम ट्रांस
2: हाँ जी जहाँ पे हमारे इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटी और कैपेसिटी को टेस्ट किया जाता है कि कितना नीचे गिर सकते हैं और यार मुझे ना कुछ दिन से लगता है AIB का बहुत चस्का चढ़ गया है क्योंकि AIB के वीडियोस में जैसी बातें होती थी जिस तरीके से वो जो मैं वैसी बात करने लग गया आजकल
1: अच्छा
2: हाँ थोड़ा थोड़ा और मुझे दिख रहा है
1: दूसरा ना बोले ना तब तक माननी नहीं चाहिए ऐसी बात
2: बिल्कुल सही बात है बट देखो आप बोलो ना बोलो क्या ये होता है आपको समझ में भी आना चाहिए ना
1: कमिंग बैक टू द क्वेश्चन
2: यस
1: अगर आपका पार्टनर बीमार हो जाए तो उसे क्या कहेंगे
2: I think answer to this question is very much similar to Tanisha's personality, which is basic.
1: Is it? काफी ऑडेशियस हो गया है ये लड़का
2: भाई इतनी
1: कल सुबह ना आए शो करने तो बुरा ना मानिएगा
2: देखिए मानिएगा जरूर मानिएगा अस्पताल जरूर आइएगा लेके मिलने आते वक्त एप्पल या फिर अनार लेके आ जाइएगा
1: जी जी जरूर लाएंगे
2: वैसे एक सवाल पूछा था उसका जवाब है बेसिक एंड मैं मजाक कर रहा था तनिषा मैडम ऐसा नहीं है
1: टू लेट टू लेट
2: इतनी ऑसम पर्सनालिटी
1: नो एस्केप फ्रॉम दिस नो एस्केप एट ऑल
2: देखिए विंटर के टाइम पे कतर का मौसम इतना ऑसम नहीं होता जितना तनिषा का पर्सनालिटी ऑसम होता
1: सही बात है करेक्ट एकदम
2: है ना
1: पर पहले बेसिक कहा था ये भूले नहीं है हम
2: क्या क्या बेसिक किसकी बात हो रही है
1: तो जिन्होंने भी जवाब दिया थैंक यू सो मच
2: जी बिल्कुल हमारे पास बहुत सारे जवाब आए जैसे कि दीपक जी ने मैसेज किया है हमें यूसुफ जी ने मैसेज किया है उसके साथ साथ हमें अनस भाई का मैसेज आया है जुल्फिकर जी का मैसेज आया है और रश्मिका जी का मैसेज आया है और एक और मैसेज आया है नाम नहीं लिखा देखो मैं एक बात बताता हूँ कई बार जब भी मैं मॉर्निंग में शो करता हूँ मैंने भी देखा है कुछ कुछ लोग ना थोड़े ऐसे कलरफुल तरीके से अपना नाम लिखते हैं
1: इमोजीज
2: से या फिर सिंबल्स यूज करके बिल्कुल कूल बात है करना चाहिए बट नाम बता दीजिए प्लीज
1: हाँ मैसेज में नाम लिखते
2: नहीं तो फिर हैशटैग स्टार एक्सक्लेमेशन बोलना थोड़ा अजीब लगेगा
1: करेक्ट बात है सो अगली बार से जब भी मैसेज करें अपना नाम जरूर लिख दें फिलहाल भेज रहे हैं कूल सॉन्ग ऑफ द आवर फॉर यू स्टे ट्यून्ड इतना
2: ऑसम कैसे हो यार
1: रेडियो ऑलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द

0: You are listening to Radio Olive 106.3 FM. Jio Bindas. Hey, can I have your number?
1: Why not? लिखो 10, 20, 30.
0: अब पूरे कतर में यही गूंजेगा क्योंकि सफारी में स्टार्ट हो चुका है 10, 20, 30 जून 29 से.
1: आपके डेली एसेंशियल्स, ग्रोसरीज, बेकरी एंड हॉट फूड से लेकर फुटवेयर, बैग्स, ट्रेंडी फैशन आइटम्स और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी तक सब कुछ मिलेगा बिल्कुल आपके बजट में.
0: शॉप कीजिए और मेगा लकी ड्रॉ के जरिए 30 बेस्ट ट्यून कार्स जीतने का सुनहरा मौका पाए. सफारी World class shopping experience. Doha, Qatar. Grow your brand across Qatar's key audiences. Connect with Hindi listeners on Radio Olive 106.3 FM, Malayalam audiences on Radio Suno 91.7 FM, and Arabic listeners on Tetkar 107.4 FM. On-air visibility supported by performance-driven digital marketing campaigns. Simple, effective, integrated. Call 3009-1063 or 3082-1063. Olive Recharge. Radio Olive 106.3 FM par. Jio Bindas. Olive Recharge.
2: This hour is brought to you by.
1: इस वेकेशन सीजन सरप्राइज करें अपने लव्ड वंस को मलाबार गोल्ड एंड डायमंड के गिफ्ट्स के साथ. पाए फ्री कैश वाउचर्स हर डायमंड और प्रेशियस जेम ज्वेलरी परचेस पर और एक्सचेंज करें अपनी पुरानी गोल्ड ज्वेलरी वो भी बिना किसी लॉस के.

0: तनिषा
1: शंकर महादेवन और मधुश्री जी की आवाज में कुछ ना कहूं मूवी से तुम्हें आज मैंने जो देखा चमका है किस्मत का तारा। ओहो
2: मैंने जो देखा
1: हाँ?
3: अरे यार ये दूसरा गाने की ओर चला गया ये जैसे ही मैं गाने की कोशिश कर रहा था मतलब मेरा मन था कि मैं वही गाऊं बट ट्यून निकला
2: ये मोह मोह के तेरी उंगलियों से जा उलझे।
1: दोनों में इतना जोर से डिफरेंस है ना, एक कहां एनर्जी में और एक कहां।
3: हाँ मैं मगर देखिए आपने आजकल के इंस्टाग्राम के सिंगर्स को नहीं देखा क्या, इंक्लूडिंग मी फॉर एग्जांपल, अगर
1: सही बात है।
3: गाना है ये वाला जो फुजोन का गाना था जिसे शफकत अमानत अली ने गाया था, मोरा सैया।

0: मगर इंस्टाग्राम में हम देख सकते हैं लोग आएंगे आएंगे और गाएंगे सावन भी तो जाए बिहारवा। तीन बार सांसें आ जाती है भाई,
1: इट्स लाइक पानी की कमी हो रही है, खराश हो रही है गले में।
0: तो हाँ, तो मैं वही कोशिश कर रहा था, थोड़ा ट्रेंड के हिसाब से चलने की कोशिश कर रहा था मैं।
1: यहाँ पे हमें सैम्स का मैसेज आया हुआ है, तासू अगेन, ये
0: एक्चुअली बहुत पहले भेजा था उन्होंने।
1: हाँ,
0: बीच में हमारा सिस्टम इतना स्पीड में आ गया था कि वो लोड नहीं हो पाया।
1: एंड ही सेइंग नाउ आफ्टरनून इज गोइंग टू बी ब्यूटीफुल फॉर श्योर।
0: अरे अरे अरे अरे अरे,
1: आप दोनों जब भी साथ होते हो माय फिंगर्स कांट स्टॉप टाइपिंग।
0: अरे अरे अरे अरे,
1: समथिंग फॉर यू इवन व्हेन आई एम ड्राइविंग। नो, ऐसे नहीं करना है,
0: ऐसा नहीं करना सर। सर क्या कर रहे हो सर,
1: समझ रहे हैं आपका, पर प्लीज ड्राइव करते हुए फोन का इस्तेमाल ना करें, सिर्फ कानों का इस्तेमाल करें और हमें सुनते रहें।
0: हां, क्या बात कर रहे हो, बात कर रहे
1: हैं। या ऑन दैट नोट, सेंडिंग एन अमेजिंग ट्रैक, स्टे ट्यून्ड एंड जीवन दा।

0: है।
1: आप सुन रहे हैं रेडियो ओलिव 106.3 FM, जियो बिंदास।
2: लाइफ 24/7 चलती है तो डेंटल केयर सिर्फ ऑफिस आवर्स में क्यों मिले? नसीम सर्जिकल एंड मेडिकल सेंटर सी रिंग रोड का डेंटल डिपार्टमेंट अब है 24/7 ओपन। रूटीन केयर, ट्रीटमेंट या डेंटल इमरजेंसी, एक्सपर्ट डेंटिस्ट और एडवांस फैसिलिटीज के साथ केयर हर वक्त अवेलेबल है। कॉल 4411133। ऑल्सो विजिट आवर डेंटल सेंटर्स इन अजीजिया और मुंतजा। नसीम सर्जिकल एंड मेडिकल सेंटर, हेल्दी स्माइल्स एनी टाइम।
3: लगा और हो जा रिचार्ज।
1: Olive Recharge, Radio Olive 106.3 FM par, Jio Bindas.
3: Olive Recharge.
4: This hour is brought to you by.
5: इस वेकेशन सीजन सरप्राइज करें अपने लव्ड वंस को मलाबार गोल्ड एंड डायमंड के गिफ्ट्स के साथ। पाए फ्री कैश वाउचर्स हर डायमंड और प्रेशियस जेम ज्वेलरी परचेस पर, और एक्सचेंज करें अपनी पुरानी गोल्ड ज्वेलरी, वो भी बिना किसी लॉस के। इश्क

0: Tanisha.
1: You're listening to Radio 106.3 FM. Tanisha और सुदेव के साथ आप दिलजीत दोसांझ की आवाज में मैजिक सुना आपने और अभी वक्त हो गया है हमारी जाने का.
2: जी बिल्कुल, टटा बबाई करके निकलने का वक्त आ चुका है. थोड़ी देर में यहाँ पे सिमरन आ जाएगी आपके साथ इवनिंग को जबरदस्त करने के लिए, तो खुली बांह से आप सिमरन का स्वागत कीजिएगा. जाते जाते जाते हम यही बोलेंगे कि रेडियो ऑलिव को इंस्टाग्राम में फॉलो करना मत भूलना, और नहीं किया तो जानी क्या बात है, क्या हरकत है, ऐसे थोड़ा ना
1: जल्दी कर लो यार, कितनी बार बता दिया है.
2: तत्काल प्रभाव से तुरंत से पहले अभी के अभी आप कर दीजिए फॉलो. उसके साथ साथ अपना ख्याल रखिएगा, अपने खास लोगों का ख्याल रखिएगा, और हमें जरा दुआओं में
1: याद रखिएगा. और सुनते रहिए रेडियो 106.3 FM. जियो बिंदास
2: मेरी जान.
0: रेडियो ऑलिव पर फ्रेश फ्रेश फ्रेश फ्रेश फ्रेश है ये गाना. फ्रेश है, फ्रेश सॉन्ग ऑफ द आवर ये गाना.

0: इस खेल में प्लेयर प्लेयर नहीं वॉरियर कहलाते हैं। यहाँ हर गोल पे एड्रेनलिन रश हाई होता है। यहाँ हर चोट एक मेडल है। हारना मना है और डरना गुनाह है। यहाँ सेलिब्रेशन के लिए ढोल नहीं, दिलों की धड़कन शोर करती है। और ऑडियंस चीयर नहीं, रोर करती है। बिकॉज इट्स नॉट जस्ट अ गेम, इट्स एन इमोशन। फीफा की हर डिटेल के लिए सुनिए रेडियो ऑलिव
1: इन एसोसिएशन विद।
0: डाउनलोड द सिटी एक्सचेंज मोबाइल ऐप नाउ टू सेंड मनी क्विकली एट द बेस्ट एक्सचेंज रेट्स।
2: ऑल्सो पाम स्विस गोल्ड बार्स आर नाउ अवेलेबल एट द बेस्ट प्राइस एट सिटी एक्सचेंज,
0: योर ट्रस्टेड रेमिटेंस पार्टनर।

अंजी हैप्पी सैटरडे। अगर आप कुछ भी कहना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, वेंट आउट करना चाहते हैं और ये बताना चाहते हैं कि आपका वीकेंड कैसा रहा और ये बताना चाहते हैं कि आपका आज का दिन कैसा रहा, सब कुछ शेयर कर सकते हैं। मेरा नंबर वही है यार, 3311063 पर। अगर आप लोग मुझे वॉइस नोट करके अपना दिल का हाल बताएंगे तो ज्यादा बेटर लगेगा। आपकी आवाज सुनने के बाद मैं गदगदी हो जाऊंगी। सुनते रहिए रेडियो ओलंपुर के जरिए जियो बिंदास। आज के मैच के बारे में इस घंटे बात करने वाले हैं, कैसा रहा मेरा वीकेंड वो भी बात करेंगे। चक्को फिर पट्टे अगला गाना तो डेली पेशे खिदमत है यार, जियो बिंदास।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो ओलिव 106.3 FM, जियो बिंदास। Grow your brand across Qatar's key audiences. Connect with Hindi listeners on Radio Olive 106.3 FM, Malayalam audiences on Radio Suno 91.7 FM, and Arabic listeners on Tetkar 107.4 FM. On-air visibility supported by performance-driven digital marketing campaigns. Simple, effective, integrated. Call 3009-1063 or 3082-1063.
1: मैं हूँ अली कपूर, Radio Olive, जियो बिंदास।
2: Olive Suno Radio Network, Qatar's number one Asian Radio Network.
3: Radio Olive, I'm number one.
4: इसके स्वैग पे मुंडे जाते हैं दिल हार के। लड़की को पसंद है कड़क चाय, मलाई मार के। तो भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त। कतर की नंबर वन आरजे
5: सिमरन के साथ
6: जबरदस्त इवनिंग मेक यू ड्राइव गोल्डन विद
7: बिगेस्ट ज्वेलरी फेस्टिवल इज नाउ हैपनिंग एट जोयालिकास। जोयालिकास ब्रिंग्स यू अ गोल्डन चांस टू सेव 40% ऑफ ऑन मेकिंग चार्जेस फॉर गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी।
8: लुलु हाइपरमार्केट्स, सुपरमार्केट्स एंड डिपार्टमेंट स्टोर्स वेयर द वर्ल्ड कम्स टू शॉप।

0: जी मैं जी सुन रही हूँ कितना देखिए हाल चाल सत श्री अकाल देखो थर्सडे को मतलब मैं वाला बड़ा मजा आया यार। थर्सडे को क्या होता है ना कि मेरा हमेशा यही मन रहता है कि यार घर पे ही चली जाऊं, क्योंकि बाहर ऐसा होता है मन सा नहीं होता। ठंडे मौसम में आपका मन करता है, लेकिन कतर में आपको बताया बहुत सारी जगहें हैं जहां पर आपको जो है वो गर्मी का एहसास तो होगा ही नहीं होगा। सो फर्स्ट आई वेंट टू जिवान आइलैंड, वहां पर एक इंडियन रेस्टोरेंट था जिसका खाना मैंने ट्राई करना था, वो ट्राई किया। एंड उसके साथ साथ मैंने एक वायरल डिजर्ट ट्राई किया, वो उसके बारे में मैं आपको वापस लौट के बताऊंगी, व्हाट द वायरल में बताऊंगी मैं, ठीक है। और उसके बाद बहुत सारी पर्ल में गए, और पर्ल में जाके बहुत सारी गेम्स जो थी वो खेली, जो एक एरिया है ना मेगापोलिस, वहां पर जाके बहुत सारी गेम्स खेली। एंड फिर सुबह के 3 बजे आलू के चने भटूरे खाए, चाय पी, और कुल मिला के जो था वीकेंड बहुत ही ज़बरदस्त रहा। मतलब फिर मैं कुछ कितने बजे मैं जागती रही। क्या होता है कि जब आप घर पे भी आ जाते हो, आपको वीकेंड चढ़ जाता है, आप मस्ती में होते हो, तो आपको नींद नहीं आती। तो मुझे सुबह 6 बजे तक भी नींद नहीं आ रही थी, तो उसके बाद जब मैं सोई तो फिर मैं उठी हूँ शाम के 4 बजे, और 4 बजे मैंने खाया है अपना ब्रेकफास्ट। तो इस तरह से मैंने अपना वीकेंड जो है अपने तरीके से क्या कहते हैं स्पेंड किया, और बड़ा मजा आया मुझे। आप बताइए आपने क्या किया 3311063 पर, और वापस लौट के मैं आपको बताऊंगी कौन सी वायरल चीज को मैंने ट्राई किया, बताऊंगी। थोड़ा इंतजार जी अविनाश।
1: अब सुनिए ऑलिव का जबरदस्त है

0: आप एक प्रोफेशनल इलेक्ट्रीशियन या प्लम्बर हैं, तो अब अपनी स्किल्स को प्रूव करने का वक्त आ गया है। हासिल कीजिए एक ऑफिशियल कहरामा सर्टिफिकेशन, पाइए अपना लाइसेंस जो आपके लिए कतर में नए जॉब अपॉर्चुनिटीज के दरवाजे खोल देगा, एक ऐसे सर्टिफिकेट के साथ जो आपकी ब्रिलियंस और क्वालिटी स्टैंडर्ड्स का कमिटमेंट शो करता है। इस मौके को हाथ से जाने मत दीजिए, अभी रजिस्टर कीजिए और बन जाइए अपने फील्ड के टॉप कॉन्ट्रैक्टर्स और टेक्नीशियंस में से एक। बस विजिट कीजिए कहरामा की वेबसाइट www.km.qa और खुद को रजिस्टर कीजिए। सर्टिफाइड बनिए, सर्टिफाइड के साथ बनिए।
1: इसके स्वैग पे मुंडे जाते हैं दिल हार के, लड़की को पसंद है कड़क चाय मलाई मार के। तो भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त, गदर की नंबर वन आरजे
2: आरजे सिमरन के साथ।
3: Zabardast evening, make you drive golden with. Biggest jewelry festival is now happening at Joyalukkas. Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry.
4: Lulu, hypermarkets, supermarkets and department stores, where the world comes to shop. Just

0: बता देते हैं उस वायरल चीज के बारे में जो कि मैंने इस वीकेंड पे ट्राई की।
1: रेडियो ऑलिव पर आरजे सिमरन के साथ व्हाट द वायरल ये बात है।
0: हां जी सिमरन कौर है आपके साथ। अपने कतर में आए दिन कुछ ना कुछ चीज जो है वो वायरल होती रहती है, और आप जिन लोगों को मेरे बारे में पता उनको ये पता है कि मुझे चीज केक्स जो है वो बहुत ज्यादा पसंद है, स्पेशली ब्लूबेरी चीज केक जो है वो मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। तो मैं हर जगह पे जहां पे भी मेरे को मौका मिलता है और जहां पे भी ब्लूबेरी चीज केक होता है मैं ट्राई करती हूँ। इनफैक्ट मैंने हेल्दी वाले ब्लूबेरी चीज केक भी ट्राई किए हुए हैं। सो इस बार मैं एक बहुत ज्यादा वीडियो अपने कतर में देख रही थी, लाइव आपकी आंखों के सामने वो ब्लूबेरी चीज केक जो है वो देते हैं बना के। सो वो वाला चीज केक मैंने ट्राई किया एंड बड़ा मजा आया यार मुझे, मतलब वो वीडियो भी मैंने बनाई क्योंकि मैं बहुत ज्यादा क्रेव कर रही थी ब्लूबेरी चीज केक के लिए और उस वीडियो को बनाने के लिए कि लाइव वो आपकी आंखों के सामने बनाने, क्योंकि मेरे को फोम हो रहा था यार, हर कोई जा रहा और हर कोई उसकी वीडियो बना रहा। तो मैंने वो वीडियो भी बनाई और मैंने ब्लूबेरी चीज केक भी खाया और बड़ा मजा आया। कतर में एक और चीज जो है वो वायरल हो रही है उसके बारे में वापस दौड़ के बताऊंगी। सिमरन कौर आपके साथ, जियो विद अस।

0: आप सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM। इस खेल में प्लेयर प्लेयर नहीं वॉरियर कहलाते हैं। यहाँ हर गोल पे एड्रेनलिन रश हाई होता है। यहाँ हर चोट एक मेडल है। हारना मना है और डरना गुनाह है। यहाँ सेलिब्रेशन के लिए ढोल नहीं, दिलों की धड़कन शोर करती है। और ऑडियंस चीयर नहीं, रोर करती है। बिकॉज इट्स नॉट जस्ट अ गेम, इट्स एन इमोशन। फीफा की हर डिटेल के लिए सुनिए रेडियो ओलिव
1: इन एसोसिएशन विद।
0: डाउनलोड द सिटी एक्सचेंज मोबाइल ऐप नाउ टू सेंड मनी क्विकली एट द बेस्ट एक्सचेंज रेट्स।
2: ऑल्सो पाम स्विस गोल्ड बार्स आर नाउ अवेलेबल एट द बेस्ट प्राइस एट सिटी एक्सचेंज,
0: योर ट्रस्टेड रेमिटेंस पार्टनर। हे, कैन आई हैव योर नंबर?
3: व्हाई नॉट, लिखो 10 20 30।
0: अब पूरे कतर में यही गूंजेगा क्योंकि सफारी में स्टार्ट हो चुका है 10 20 30 June 29th से।
3: आपके डेली एसेंशियल्स, ग्रोसरीज, बेकरी एंड हॉट फूड से लेकर फुटवेयर, बैग्स, ट्रेंडी फैशन आइटम्स और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी तक सब कुछ मिलेगा बिल्कुल आपके बजट में।
0: शॉप कीजिए और मेगा लकी ड्रॉ के जरिए 30 बेस्ट ट्यून कार्स जीतने का सुनहरा मौका पाएं। सफारी वर्ल्ड क्लास शॉपिंग एक्सपीरियंस दोहा कतर।
4: इसके स्वैग पे मुंडे जाते हैं दिल हार के। लड़की को पसंद है कड़क चाय मलाई मार के। भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त कतर की नंबर वन आरजे
5: आरजे सिमरन के साथ।
6: जबरदस्त इवनिंग मेक यू ड्राइव गोल्डन विद।
7: बिगेस्ट ज्वेलरी फेस्टिवल इज नाउ हैपनिंग एट जोयालिकास। जोयालिकास ब्रिंग्स यू अ गोल्डन चांस टू सेव 40% ऑफ ऑन मेकिंग चार्जेस फॉर गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी।
8: लुलू हाइपरमार्केट्स, सुपरमार्केट्स एंड डिपार्टमेंट स्टोर्स, वेयर द वर्ल्ड कम्स टू शॉप।

आज तो दो दो वद्दा वायरल हो गए हैं यार। सिमरन कौर है आपके साथ और कतर में एक और चीज वायरल हो रही है, वो है बटर आइसक्रीम। एक्चुअली ये बटर नहीं है, वो बटर की शेप में एक आइसक्रीम है जो कि बहुत ज्यादा अपने कतर में वायरल हो रही है। और अगर आपने अभी तक इस आइसक्रीम को ट्राई नहीं किया है अपने कतर में तो ट्राई करिएगा और बताइएगा कि आपके आपको ये जो बटर आइसक्रीम है वो कैसी लगी। क्योंकि क्या होता है ना कि जब भी कोई चीज वायरल होती है उसका ट्राई करने का मेरे जैसे लोगों को बड़ी चुल्ल होती है कि यार जरूर करनी है, क्योंकि वरना फिर सब लोग पोस्ट कर रहे हैं, जैसे कि ब्लूबेरी चीज केक के साथ हुआ, फिर ऐसा होता है कि यार तुमने अभी तक जो है वो क्यों नहीं किया। सो इसमें दो फ्लेवर्स आती हैं, एक आती है मैंगो और एक आती है हनी फ्लेवर। सो आप एक बढ़िया तरीके का बटर की तरह जो बना होता है, बट ये एक क्रंची टोस्ट क्रम्बल जो है वो होता है। सो या ट्राई करके देखिएगा, मजा आएगा आपको। सिमरन कौर आपके साथ जियो बिंदास, क्योंकि बाकी लोग मजे कर रहे हैं, मैं देख के सोच रही हूँ कि मजे आएंगे, लेकिन जब मैं ट्राई करूंगी तो फिर असली वाला आपको तब बताऊंगी।

0: You are listening to Radio Olive 106.3 FM. Jio Bindas.
1: इस वेकेशन प्यार से हमारा इंतजार करने वाले अपनों को एक गोल्डन सरप्राइज क्यों ना दे मलबार गोल्ड एंड डायमंड्स के गोल्डन समर ऑफर के साथ डायमंड एंड प्रेशियस जेम ज्वेलरी खरीदने पर पाइए फ्री कैश वाउचर्स अपने पुरानी गोल्ड ज्वेलरी को एक्सचेंज कीजिए विदाउट एनी लॉस और अब विद द इंपोर्ट ड्यूटी रिविजन इन इंडिया यू कैन नाउ सेव अप टू 15% ऑन गोल्ड प्राइसेस हियर इन जीसीसी Visit Malabar Gold and Diamonds today.
2: Commercial Bank presents CB 2026 Million Reals Dream.
3: अब सिर्फ savings नहीं, सपने grow होंगे. जीतिए पूरे 5 million reals cash prizes.
2: जीतने के चार रास्ते. पहला, अपना account balance बढ़ाइए. हर 10,000 reals growth पर पाइए एक coupon.
3: दूसरा, अगर salary 4,000 plus है या 50% save किया है, तो आप eligible है.
2: तीसरा, नए customers को पहली salary या 10,000 funding पर guaranteed coupon. और चौथा, 9 महीने रेगुलर सैलरी पर पाइए एक एक्स्ट्रा कूपन और मेगा ड्रॉ टिकट

0: भाई साहब फीफा वर्ल्ड कप जो है एकदम क्रेजी लेवल पे पहुंचता जा रहा है।
1: ये खेल है ब्लॉकबस्टर
2: in association with
3: download the city exchange mobile app now to send money quickly at the best exchange rates
4: also palm swiss gold bars are now available at the best price at city exchange
3: your trusted remittance partner
0: to aaj kaun sa match hai कनाडा और मोरक्को के बीच का मैच। सो यार मतलब क्या होता है कि चाहे आपको मैच की समझ लगे ना लगे, लेकिन कतर में जो मैच की वाइब सेट होती है फैन जोन्स में या फिर जहां जहां पे स्क्रीन लगी हुई है उसको देख के मतलब आपका अपने आप ही मैच देखने का जो है वो मन कर जाता है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं हमेशा आई एम ऑलवेज अप ओके मैच को देखने के लिए, चाहे मुझे समझ लगे चाहे ना लगे, बस मुझे लोग चाहिए कि यार चलो मेरे साथ और मैच देखो। सो आप देख रहे हो आज मैच कनाडा और मोरक्को के बीच में, बताइएगा मुझे 3311063 पर आप घर पे मैच बैठ के देखने वाले बंदे हो या फिर आपको भी लोगों के साथ बैठ के मजा आता है यार वाइब करने में। जियो बिंदास।

0: Qatar's number one radio station. Radio Olive 106.3 FM. Jio Bindaas. Hey, can I have your number?
1: Why not? Likho 10, 20, 30.
0: अब पूरे कतर में यही गूंजेगा क्योंकि सफारी में स्टार्ट हो चुका है 10, 20, 30 जून 29 से.
1: आपके डेली एसेंशियल्स, ग्रोसरीज, बेकरी एंड हॉट फूड से लेकर फुटवेयर, बैग्स, ट्रेंडी फैशन आइटम्स और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी तक सब कुछ मिलेगा बिल्कुल आपके बजट में.
0: शॉप कीजिए और मेगा लकी ड्रॉ के जरिए 30 बेस्ट ट्यून कार्स जीतने का सुनहरा मौका पाए. सफारी World class shopping experience. Doha, Qatar.
2: Hi, Radio Olive. 106.3 listeners. This is Ranveer Singh. Radio. Stay tuned.
0: Olive Suno Radio Network. Qatar's number one Asian radio network.
3: Radio Olive. I'm a number one.
4: इसके स्वैग पे मुंडे जाते हैं दिल हार के. लड़की को पसंद है कड़क चाय, मलाई मार के. भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त कतर की नंबर वन आरजे
5: आरजे सिमरन के साथ.
6: Zabardast evening make you drive golden with.
7: Biggest jewelry festival is now happening at Joyalukkas. Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry.
8: Lulu, hypermarkets, supermarkets and department stores, where the world comes to shop.

0: बाय द वे, अगर आपको और किसी चीज में इंटरेस्ट नहीं है तो यहाँ पे तो होगा। फैमिली और फ्रेंड्स और बच्चे भी जा सकते हैं, जिसका आज लास्ट डे है। मैं बात कर रही हूँ दोहा समर ट्रेड शॉपिंग एग्जीबिशन का। लास्ट डे है दोहा एग्जीबिशन एंड कन्वेंशन सेंटर में, ये हो रहा है। 23 तारीख को ये चालू हुआ था और रात के 10 बजे तक है, आज भी जा सकते हो। एंट्री बिल्कुल फ्री है, सो नो स्ट्रेस, जाइए, लास्ट डे है और एंजॉय कर लीजिए। सिमरन कौर है आपके साथ, मैं गैजेट जियो बिंदास, एंड सैटरडे की शाम है। क्या कर रहे हो? मुझे पता है कि बाहर गर्म है मामला, लेकिन आप कहाँ पे घूम रहे हो, क्या कर रहे हो, मैसेज करके जरूर बताइएगा। 3311063 पर
1: रेडियो ऑलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द आवर।

0: सुनते हैं नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM।
1: सोचो अगर सेविंग से आप बन जाओ मिलियनेयर, कमर्शियल बैंक के सेव एंड विन कैंपेन में भाग लीजिए।
2: हर 10,000 कतरी रियाल सेविंग ग्रोथ पे मिलेगा एक कूपन, या सिर्फ 50% सैलरी सेव करो एंड एंटर द ड्रॉ।
1: न्यू कस्टमर हो तो अकाउंट खोलो और फर्स्ट सैलरी ट्रांसफर पे गारंटीड चांस टू विन,
2: और 9 महीने की कंसिस्टेंट सैलरी ट्रांसफर के साथ मेगा ड्रॉ में एंट्री पक्की।
1: तो फिर सोचना क्या, अगले मिलियनेयर आप हो सकते हो। आज ही शुरू करो सेविंग्स, कमर्शियल बैंक, सेव and win.
3: Grow your brand across Qatar's key audiences. Connect with Hindi listeners on Radio Olive 106.3 FM, Malayalam audiences on Radio Suno 91.7 FM, and Arabic listeners on Tetkar 107.4 FM. On-air visibility supported by performance-driven digital marketing campaigns. Simple, effective, integrated. Call 3009-1063 or 3082-1063.
4: Iske swag pe munde jaate hain dil haar ke. लड़की को पसंद है कड़क चाय मलाई मार के। तो भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त, कतर की नंबर वन आरजे
5: आरजे सिमरन के साथ।
6: Zabardast evening, make you drive golden with.
7: Biggest jewelry festival is now happening at Joyalukkas. Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry.
8: Lulu, hypermarkets, supermarkets and department stores, where the world comes to shop.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: You are listening to Radio Olive 106.3 FM.
2: A ring for the newly married, cute little bangle for the newborn.
3: अरे यार, holiday season is here और फिर वही gifting का tension. फिर Malabar Gold and Diamonds, golden summer के साथ buy a free cash vouchers on diamond and precious gem jewellery purchases. Plus, exchange your gold jewellery and upgrade to the latest designs without any loss. और सुनो, there's more. With the import duty revision in India, you can now save up to 15% on gold prices here in the GCC. Visit Malabar Gold and Diamonds today.
4: इसके स्वैग पे मुंडे जाते हैं दिल हार के। लड़की को पसंद है कड़क चाय मलाई मार के। तो भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त। गदर की नंबर वन आरजे
5: सिमरन के साथ।
6: Zabardast evening, make you drive golden with.
7: Biggest jewelry festival is now happening at Joyalukkas. Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry.
8: Lulu, hypermarkets, supermarkets and department stores, where the world comes to shop. Just

0: हाय एवरीवन, मैं हूं अरमान मलिक.
1: अरमान मलिक
0: 106.3 एफएम रेडियो ऑलिव जियो बिंदास.
2: ऑलिव सुनो रेडियो नेटवर्क कतर्स नंबर वन एशियन रेडियो नेटवर्क.

अपने कतर में जो अलखोर जू है वहां पर पैंडा हाउस के बारे में तो आपने सुना होगा। लेकिन एक चीज मुझे थोड़े दिन पहले ही पता लगी है, उसके साथ साथ आप जो है वो अपने कतर में अलखोर जू में जो है वो एलिफेंट्स जो है, एशियन एलिफेंट्स जो है वहां पे वो भी देख सकते हैं। ये दो हैं और ये फैमिली पार्क अलखोर का जो फैमिली पार्क एंड जू है वहां पर आपको मिलेगा। एंड ये जो दो हाथी हैं ये बहुत ज्यादा खास हैं क्योंकि ये गिफ्ट किए गए थे, जी हाँ, नेपाल गवर्नमेंट की तरफ से अपने कतर को गिफ्ट किए गए थे और वहां पर जाके ये आप देख सकते हैं। 15 रियाल की एंट्री जो है अलखोर पार्क की आपको लगेगी। सो फैमिली और फ्रेंड्स के साथ आप जा सकते हैं। सिर्फ हाथी ही नहीं है और भी बहुत सारी चीजें हैं। टू बी वेरी ऑनेस्ट मुझे अभी तक चांस नहीं लगा पैंडा को जाके देखने का, और पैंडा के साथ साथ आप एलिफेंट्स भी हैं और भी बहुत सारे जानवर हैं जो आप इंजॉय कर सकते हैं। मेरे हिसाब से दोहा से 45 मिनट तक की ड्राइव है जहां पर आप जो है ये अलखोर पार्क को एंजॉय कर सकते हैं। यार कतर में इतनी सारी चीजें देखने के लिए कि नंबर लगता ही नहीं है। यार आप में से कितने लोग हैं जो कि अलखोर जो है वो जू में गए हुए हैं बताइएगा मुझे। 3311106 3 वर्ल्ड रेडियो।

0: पे मैच हुआ प्रोफाइल। बायो भी थोड़ा हटके था एंड रेडियस विद इन अ माइल।
1: 52 राइट स्वाइप्स के बाद ये करिश्मा हुआ।
2: आई वाज टोटली वर्थ इट।
1: जिंदगी बदलने आई मेरी जिंदगी में मुस्कान दुआ।

0: प्लीज बताओ, मुझे भी जानना है ये राज ताकि मैं चैन से मर सकूं।
1: आगे जाके

0: धड़न धड़न।
1: आप सुन रहे हैं रेडियो ओलिव 106.3 FM, जियो बिंदास।

बातें करती हूँ मैं, हर रोज आप मुझे सुनते हो। तो अगर आपको मेरा शो हर रोज सुनने की आदत है, रेडियो ऑलिव को हर रोज सुनने की आदत है, इसके बीच में अगर आप इंडिया चले गए, या फिर आप नेपाल चले गए, या फिर आप श्रीलंका चले गए, या फिर आप कनाडा चले गए, या फिर आप पाकिस्तान चले गए, जहां पे आपका घर है, तो आप क्या करेंगे? ऑफ कोर्स एप्लीकेशन के थ्रू सुनेंगे, मिस थोड़ी ना करना है यार आपने। तो एप्लीकेशन इन शॉर्ट हमारे फोन में, मतलब आपके फोन में जो है हमारी एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर लीजिएगा, और फिर आप दुनिया के किसी भी कोने में जो है वो बैठ के हमको सुन सकते हैं, ताकि आपके और हमारे प्यार के बीच में ये दूरियां आनी नहीं चाहिए। बस एप्लीकेशन ऑन किया और हो गया ऑन सब कुछ। सिमरन गौरिया के साथ जी अविंदा। उसके अलावा रेडियो ऑलिव को सोशल मीडिया पे भी फॉलो करना मत भूलिएगा।

0: Hey, can I have your number?
1: Why not? लिखो 10, 20, 30.
0: अब पूरे कतर में यही गूंजेगा क्योंकि सफारी में स्टार्ट हो चुका है 10, 20, 30 June 29 से.
1: आपके डेली एसेंशियल्स, ग्रोसरीज, बेकरी एंड हॉट फूड से लेकर फुटवेयर, बैग्स, ट्रेंडी फैशन आइटम्स और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी तक सब कुछ मिलेगा बिल्कुल आपके बजट में.
0: शॉप कीजिए और मेगा लकी ड्रॉ के जरिए 30 बेस्ट ट्यून कार्स जीतने का सुनहरा मौका पाए. सफारी वर्ल्ड क्लास शॉपिंग एक्सपीरियंस दोहा कतर.
2: हेलो लिसनर्स, मेरा नाम है राजपाल यादव. और आप सुन रहे हैं कतर का नंबर वन हिंदी रेडियो स्टेशन रेडियो ऑलिव 106.3 FM. जियो बिंदास.
0: ऑलिव सुनो रेडियो नेटवर्क कतर नंबर वन एशियन रेडियो नेटवर्क.
3: रेडियो ऑलिव नंबर वन.
4: इसके स्वैग पे मुंडे जाते हैं दिल हार के. लड़की को पसंद है कड़क चाय मलाई मार के. तो भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त कतर की नंबर वन आरजे
5: आरजे सिमरन के साथ.
6: Zabardast evening. Make you drive golden with.
7: Biggest jewelry festival is now happening at Joyalukkas. Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry.
8: Lulu, hypermarkets, supermarkets and department stores. Where the world comes to shop.

0: रियलिटी चेक के लिए तैयार हो?
1: रेडियो ऑलिव पर आरजे सिमरन के साथ
0: जरूरी है। उसको सहना हम नहीं है। अगर आपके पास कोई इंसान नहीं है तो वहां पर ठीक है कि आप किसी ऐसे इंसान को ना बताइए जिसको फर्क ही नहीं पड़ेगा कि आप आपके ऊपर इस चीज का, इस सिचुएशन का क्या असर पड़ सकता है। लेकिन अगर आपका कोई अपना है आपके साथ, अगर आप उससे अपना दुख बांटेंगे या फिर आपका दोस्त है, तो भाई थोड़ा तो दुख कम होगा यार। सबको अपना अपना सहना है, लेकिन सबको अपनी लाइफ में एक इंसान की जरूरत जरूर है जिसके सामने वो अपना दुख निकाल के रख सके और वो सामने वाला इंसान आपको जज ना करे। बट यस, अगर आपकी लाइफ में कोई है नहीं जो कि आपको लगता नहीं कि वर्थ है यार उतना कि आप अपना गम जो है वो उस इंसान को बता सके, तो इस केस में ये चीज जो है वो बिल्कुल सही होती है कि भाई जब सहना खुद को है तो बताकर तमाशा क्यों करना। बट आई विश हम सबके पास, आप सबके पास कोई ना कोई ऐसा इंसान जरूर हो ताकि आपको सब कुछ अकेले सहना ना पड़े। यार थोड़ा तो दुख कहते हैं ना बांटने से कम हो जाता है, वो जरूर होना चाहिए।
1: अब सुनिए ऑलिव का जबरदस्त है।

0: आप सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM।
1: इस वेकेशन प्यार से हमारा इंतजार करने वाले अपनों को एक गोल्डन सरप्राइज क्यों ना दे। मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स के गोल्डन समर ऑफर के साथ डायमंड एंड प्रेशियस जेम ज्वेलरी खरीदने पर पाइए फ्री कैश वाउचर्स। अपने पुरानी गोल्ड ज्वेलरी को एक्सचेंज कीजिए विदाउट एनी लॉस। और अब विद द इंपोर्ट ड्यूटी रिविजन इन इंडिया यू कैन नाउ सेव अप टू 15% ऑन गोल्ड प्राइसेस हियर इन GCC। विजिट मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स टुडे।
2: इसके स्वैग पे मुंडे जाते हैं दिल हार के। लड़की को पसंद है कड़क चाय मलाई मार के। तो भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त कतर की नंबर वन आरजे
3: आरजे सिमरन के साथ।
4: Zabardast evening, make you drive golden with.
5: Biggest jewelry festival is now happening at Joyalukkas. Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry.
6: Lulu, hypermarkets, supermarkets and department stores, where the world comes to shop. Just

देखो दोस्तों, अब टाइम आ गया कि आप लोगों का नाम लिया जाना चाहिए, क्योंकि आपका नाम लेना बनता है दोस्त। चालू करे जी, सुने हो कितना देखिए, हलचल सत श्री अकाल, सिमरन कौर आपकी साथ। अब अगर आप चाहते हैं कि आपका नाम मैं रेडियो के ले लूं, तो मैं रेडियो पे आपका नाम ले लूंगी, बस आप मुझे अपना नाम बता दो, ठीक है। नाम बताने के लिए आप क्या करेंगे, मुझे व्हाट्सएप करेंगे। मेरा व्हाट्सएप का नंबर है 3311106 3, जी 3311106 3 पर आप अपना नाम लिख के भेज दीजिए, सिर्फ और सिर्फ आपका नाम। चलिए अब मैं नाम पढ़ना स्टार्ट कर रही हूँ। लता जी थैंक यू सो मच, अनुष्का जी थैंक यू सो मच, मोहम्मद जी थैंक यू सो मच, शादाब जी, साजिद जी थैंक यू सो मच, सबया जी थैंक यू सो मच, नजीमुल्ला जी, कायनात जी, अबरार जी, शाबाज जी, हिमकुश जी, शिल्पी जी, इरफान जी, महबूब जी, विसल जी, यामिनी जी थैंक यू सो मच, अतिक जी थैंक यू सो मच, महरीन जी थैंक यू सो मच, शिवा जी थैंक यू सो मच, अदील जी थैंक यू सो मच, शेख जुनेद जी थैंक यू सो मच, हाजरा जी थैंक यू सो मच। दोस्तों देखो प्लीज, ये वॉइस नोट कौन भेज रहा है, अब आपको लगता है मैं बोलते बोलते वॉइस नोट सुनूंगी आपका, यार प्लीज। नवीद जी थैंक यू सो मच, आयजा जी थैंक यू सो मच, मुदस्सिर जी थैंक यू सो मच, दिलदार जी थैंक यू सो मच, अमन जी थैंक यू सो मच, द्वोज आई होप मैं सही बोल रही हूँ, और बिक्रम जी थैंक यू सो मच, नारायण जी थैंक यू सो मच आपके मैसेज के लिए, एंड दैट्स इट फॉर नाउ। जिन जिन लोगों को मैंने अपने नाम ले लिया ना, अब बोलो थैंक यू, और साथ में अपना फेवरेट वाला इमोजी जरूर बनाना देना। इंतजार कर रही हूं मैं।

0: CB2026 million reals dream.
1: अब सिर्फ सेविंग्स नहीं, सपने ग्रो होंगे. जीतिए पूरे 5 million reals cash prizes.
0: जीतने के चार रास्ते. पहला, अपना अकाउंट बैलेंस बढ़ाइए. हर 10,000 reals ग्रोथ पर पाइए एक कूपन.
1: दूसरा, अगर सैलरी 4,000 प्लस है या 50% सेव किया है तो आप एलिजिबल है.
0: तीसरा, नए कस्टमर्स को पहली सैलरी या 10,000 फंडिंग पर गारंटीड कूपन. और चौथा, 9 महीने रेगुलर सैलरी पर पाइए एक एक्स्ट्रा कूपन और मेगा ड्रॉ टिकट.
2: इसके स्वैग पे मुंडे जाते हैं दिल हार के. लड़की को पसंद है कड़क चाय मलाई मार के. तो भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त. गदर की नंबर वन आरजे
3: आरजे सिमरन के साथ.
4: Zabardast evening. Make you drive golden with.
5: Biggest jewelry festival is now happening at Joyalukkas. Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry.
6: Lulu, hypermarkets, supermarkets and department stores. Where the world comes to shop.

जब भी कोई फिल्म या फिर कोई गाना बनता है ना, तो उससे रिलेटेड बड़ी ही इंटरेस्टिंग स्टोरीज होती है। बात करती हूँ कल हो ना हो के बारे में। मैं पढ़ रही थी यार, मैं कहती सुनियो की दादी की हाल चाल, सत श्री अकाल, सिमरन कौर है आपके साथ। तो जब कल हो ना हो की शूटिंग चल रही थी ना, तो चार दिन की शूटिंग हुई थी। शाहरुख खान जो थे वो बहुत ज्यादा बीमार हो गए थे, और मतलब ही वॉज लाइक अबाउट टू क्विट कि भाई मैं मूवी नहीं कर पाऊंगा। फिर जो निखिल अडवाणी थे, उन्होंने करण जौहर को कन्विंस किया कि भाई उसको थोड़ा रिकवर हो लेने दे और फिर से हम शूटिंग करेंगे। और आपको पता है, जब शाहरुख खान के लिए ये बोला गया कि ठीक है उनको थोड़ा टाइम दे दो, और शाहरुख खान ने 6 महीने लिए थे रिकवर होने के लिए, 6 महीने उनका इंतजार किया गया था इस फिल्म के लिए, क्या बात है। एक और कल हो ना हो से जुड़ी हुई एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है, जो कि मैं आपको वापस लौट के बताऊंगी। सिमरन कौर आपके साथ, जियो बिंदास।

0: इस खेल में प्लेयर प्लेयर नहीं वॉरियर कहलाते हैं। यहाँ हर गोल पे एड्रेनलिन रश हाई होता है। यहाँ हर चोट एक मेडल है। हारना मना है और डरना गुनाह है। यहाँ सेलिब्रेशन के लिए ढोल नहीं, दिलों की धड़कन शोर करती है। और ऑडियंस चीयर नहीं, रोर करती है। बिकॉज इट्स नॉट जस्ट अ गेम, इट्स एन इमोशन। FIFA की हर डिटेल के लिए सुनिए रेडियो ऑल एयर
1: इन एसोसिएशन विद।
0: डाउनलोड द सिटी एक्सचेंज मोबाइल ऐप नाउ टू सेंड मनी क्विकली एट द बेस्ट एक्सचेंज रेट्स।
2: ऑल्सो पाम स्विस गोल्ड बार्स आर नाउ अवेलेबल एट द बेस्ट प्राइस एट सिटी एक्सचेंज,
0: योर ट्रस्टेड रेमिटेंस पार्टनर।

बात कर रहे हैं कल हो ना हो फिल्म के बारे में। जब इसकी स्क्रिप्ट लिखी गई ना तो स्क्रिप्ट को ये सोच के लिखा गया था कि ये जो फिल्म है वो करीना कपूर करने वाली, उनके माइंड में करीना कपूर ही लीडिंग लेडी थी। बट क्या हुआ कि जब करीना कपूर को इस फिल्म के बारे में पूछा गया तो उन्होंने बोला कि भाई उनकी फीस जो है वो बहुत हाई लगी। अब उनकी फीस हाई थी तो इसीलिए प्रीति जिंटा को इस फिल्म के लिए रिप्लेस कर दिया गया। और प्रीति जिंटा बहुत ज्यादा कैरेक्टर में एकदम निखर के आई थी और परफेक्ट लग रही थी यार उनके कैरेक्टर के लिए, स्पेशली जब उनका वो गाना याद आता है प्रीटी वुमन, है ना। सो अमेजिंग जो है वो चाहे वो सैफ अली खान हो, चाहे वो प्रीति जिंटा हो, चाहे वो शाहरुख खान हो, सो कमाल की लगे थे यार। सिमरन कौर आपके साथ, जियो बिंदास।

0: सुनते हैं नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM. इस खेल में प्लेयर प्लेयर नहीं वॉरियर कहलाते हैं. यहाँ हर गोल पे एड्रेनलिन रश हाई होता है. यहाँ हर चोट एक मेडल है. हारना मना है और डरना गुनाह है. यहाँ सेलिब्रेशन के लिए ढोल नहीं, दिलों की धड़कन शोर करती है. और ऑडियंस चीयर नहीं, रोर करती है. बिकॉज इट्स नॉट जस्ट अ गेम, इट्स एन इमोशन. FIFA की हर डिटेल के लिए सुनिए रेडियो ओलिव
1: इन एसोसिएशन विद.
0: डाउनलोड द सिटी एक्सचेंज मोबाइल ऐप नाउ टू सेंड मनी क्विकली एट द बेस्ट एक्सचेंज रेट्स.
2: ऑल्सो पाम स्विस गोल्ड बार्स आर नाउ अवेलेबल एट द बेस्ट प्राइस एट सिटी एक्सचेंज,
0: योर ट्रस्टेड रेमिटेंस पार्टनर.
3: सलाम प्रणाम नमस्कार वणकम, मैं हूं जैकी श्रॉफ.
4: जैकी श्रॉफ
3: रेडियो 106.3 जियो बिंदास.
0: ओलिव सुनो रेडियो नेटवर्क कतर्स नंबर वन एशियन रेडियो नेटवर्क.
5: रेडियो ओलिव नंबर वन.
6: इसके स्वैग पे मुंडे जाते हैं दिल हार के. लड़की को पसंद है कड़क चाय मलाई मार के. भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त कतर की नंबर वन आरजे
7: आरजे सिमरन के साथ.
8: जबरदस्त इवनिंग मेक यू ड्राइव गोल्डन विद.
9: बिगेस्ट ज्वेलरी फेस्टिवल इज नाउ हैपनिंग एट जोयालिकास. जोयालिकास ब्रिंग्स यू अ गोल्डन चांस टू सेव 40% ऑफ ऑन मेकिंग चार्जेस फॉर गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी.
10: लुलू हाइपरमार्केट्स सुपरमार्केट्स एंड डिपार्टमेंट स्टोर्स वेयर द वर्ल्ड कम्स टू शॉप.

0: टफ काम और भी आसान। कार्मल ग्रुप लाया है शैंटुई के व्हील लोडर्स, एक्सकेवेटर्स और बुलडोजर्स। मजबूती ऐसी जो हर चैलेंज जीत ले। विजिट कार्मल ग्रुप नाउ। Grow your brand across Qatar's key audiences. Connect with Hindi listeners on Radio Olive 106.3 FM, Malayalam audiences on Radio Suno 91.7 FM, and Arabic listeners on Tetkar 107.4 FM. On-air visibility supported by performance-driven digital marketing campaigns. Simple, effective, integrated. Call 3009-1063 or 3082-1063.
1: इसके स्वैग पे मुंडे जाते हैं दिल हार के। लड़की को पसंद है कड़क चाय मलाई मार के। तो भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त। कतर की नंबर वन आरजे
2: आरजे सिमरन के साथ।
3: Zabardast evening, make you drive golden with.
4: Biggest jewelry festival is now happening at Joyalukkas. Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry.
5: Lulu, hypermarkets, supermarkets and department stores, where the world comes to shop.

0: आप सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM।
1: Fresh, fresh on the grill. Slow cooked mandi. Perfectly spiced prawns. And that special chutney. No noise, no drama. Just seafood done right. BBQ fish, crabs, prawns. Crafted with patience. Served with pride. Danatal Pahar. The ultimate Qatari adventure. Souq Waqif Alkhor.
2: इसके स्वैग पे मुंडे जाते हैं दिल हार के। लड़की को पसंद है कड़क चाय मलाई मार के। तो भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त कतर की नंबर वन आरजे
3: सिमरन के साथ।
4: Zabardast evening make you drive golden with.
5: Biggest jewelry festival is now happening at Joyalukkas. Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry.
6: Lulu, hypermarkets, supermarkets and department stores where the world comes to shop.

अब सिमरन कौर की ऐसे गलती मारने का टाइम आ चुका है। सिमरन कौर है आपके साथ और अब होती है आपकी और हमारी कल शाम को मुलाकात। हफ्ते का पहला दिन उसकी शुरुआत हो जाएगी आप लोगों के लिए, अगर आपकी आज छुट्टी थी तो, अदरवाइज तो कल दूसरा दिन हो जाएगा आपके और हमारे लिए। तो या अभी के लिए सिमरन कौर गलती मार रही है, आप एंजॉय करिए, हाइड्रेट योरसेल्फ, टेंशन ना लेना, स्ट्रेस ना लेना, स्ट्रेस और टेंशन लेके आपके बाल झड़ जाएंगे और यहाँ पे और भी बाल झड़ते हैं, फिर उसकी भी टेंशन हो जाएगी, फिर और बाल झड़ जाएंगे। ठीक है, तो खुश रहा करो मेरी तरह, खाते पीते रहो, ऐश करते रहो, चेहरे पे बड़े वाली स्माइल रखो, किसी का दिल मत दुखाना, बी नाइस टू एवरीवन यार, गुड नाइट, जस्ट टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड लव यू सगिलो।

गुड इवनिंग, यू आर लिसनिंग मिडनाइट लाउंज एंड दिस इज मी मुस्कान विद यू और सुन रहे हैं आप रेडियो ऑल 106.3 एफएम। आई हैव अ वेरी गुड क्वेश्चन फॉर यू। एक तो देखो सैटरडे है, सैटरडे का वाइब्स टोटली डिफरेंट क्योंकि कल जाना होगा वापस से ऑफिस। संडे इज न्यू मंडे हेयर। सो बेसिकली हर संडे को जब आप यू नो ऑफिस जाने के बारे में सोचते हो तो आपको लगता है यार ये वीकेंड कितनी जल्दी निकल गया ना। सो लेट्स टॉक अबाउट यू नो सम अदर थिंग्स ताकि हमारा जो दिमाग है वो वापस से ही परेशान ना हो ये सोचकर कि कल से ऑफिस जाना है। सो आई एम श्योर आपका जो फ्राइडे है, आपका जो सैटरडे है, बहुत अच्छा निकला होगा। और इसी के साथ लेट्स टॉक अबाउट म्यूजियम। सो म्यूजियम में क्या होती है? पुरानी चीजें, पेंटिंग्स, डायनासोर्स। लेकिन अगर मैं कहूँ कि दुनिया में एक ऐसा म्यूजियम भी है जो इतना छोटा है कि एक वक्त में सिर्फ एक ही इंसान अंदर जा सकता है, यस, एरिजोना यूएसए में इतनी टाइनी म्यूजियम्स हैं जो पुराने यू नो एलिवेटर के अंदर बनाए गए थे और दुनिया के अलग अलग जगहों पर फोन बूथ साइज म्यूजियम भी हैं। और तब मुझे लगा कि म्यूजियम साइज से नहीं बनता यार, मतलब हमने सोचा था कि म्यूजियम इज़ ऑल अबाउट यू नो बड़े बड़े म्यूजियम। स्टोरी से बनता है भाई, कहानी एक पुराने कॉइन की हो, टाइपराइटर की हो, हैंड रिटन लेटर की हो, ये सब किसी के लिए ऑर्डिनरी हो सकते हैं लेकिन किसी और के लिए ये इतिहास हिस्ट्री जैसा भी हो सकता है। सो शायद इसीलिए हम सबके घर में एक इनविजिबल म्यूजियम होता है जहाँ पुरानी घड़ी, दादी का चश्मा या स्कूल का यू नो कोई पुराना संभाल जो है वो संभाल कर रखा जाता है और उसके साथ बड़ी यादें भी जुड़ी हुई होती हैं। सो अगर आप अपनी लाइफ का सिर्फ एक चीज म्यूजियम में रख सकते तो वो क्या होती? सुन रहे हैं आप रेडियो ऑलिव, दिस इज मी मुस्कान विद यू। 3311063 इज माई व्हाट्सएप नंबर। स्टे ट्यून्ड, जियो, बिंदास।

0: हेलो, ये है मिडनाइट लाउंज।
1: यू आर लिसनिंग टू कतार्स नंबर वन रेडियो स्टेशन, रेडियो ओलिव 106.3 FM, जियो बिंदास।

सो एक कॉफी और 1000 कहानियां। इटली में लोग एक्सप्रेसो बस 2 मिनट में खड़े होकर 2 मिनट में फिनिश कर देते हैं। टर्की में कॉफी इतनी धीरे बनाई जाती है कि उसे पेशेंस का सिंबल माना जाता है। जापान में कॉफी कैफेज ऑलमोस्ट लाइब्रेरी की तरह इतने शांत होते हैं। और अगर मैं बात करूं दोहा की, तो यहाँ पर कॉफी इज डिफरेंट एक्सपीरियंस। बिल्कुल अलग अलग कैफेज, अलग अलग कल्चर, अलग अलग लोग आपको एक जगह पर देखने के लिए मिलेंगे। और इंडिया की बात करूं तो कॉफी के साथ डिस्कशन जो है वो फ्री में मिलता है। सो इंटरेस्टिंग बात यह है कि एक्सपर्ट्स कहते हैं कि टेस्ट सिर्फ टंग डिसाइड नहीं करता, एनवायरमेंट भी डिसाइड करता है। म्यूजिक, कंपनी, मूड, सब कुछ चेंज हो जाता है एक कप अच्छी कॉफी के साथ। इसीलिए एयरपोर्ट वाली कॉफी जो है वो घर की कॉफी का टेस्ट बहुत डिफरेंट देती है। सो चाहे बीन्स सेम ही क्यों ना हो, कभी कभी जो कॉफी है वो अलग लगती है, क्योंकि वो मोमेंट हमें याद रहता है। तो बताइए, आपके लिए कॉफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है या उसके साथ बैठा हुआ इंसान? यू आर लिसनिंग रेडियो ऑलिव, मैं हूँ मुस्कान और नंबर है 3311063। स्टे ट्यून्ड, जियो बिंदास।

0: सुनते हैं नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM।
1: ये है मिडनाइट लव।

आज सिनेमा लवर्स के लिए एक जबरदस्त ट्रिविया है। हम अक्सर सोचते हैं जितना ज्यादा स्क्रीन टाइम उतना बड़ा इम्पैक्ट, लेकिन ऑस्कर हिस्ट्री कुछ और कहती है भाई। एक एक्ट्रेस है बियाट्रिका स्ट्रेट, जिन्होंने फिल्म नेटवर्क में सिर्फ 5 मिनट 40 सेकंड का रोल किया था और इस परफॉर्मेंस के लिए उन्हें ऑस्कर मिल गया था। सिर्फ 5 मिनट, सोचिए कभी कभी लाइफ में जो इम्पैक्ट होता है वो टाइम से नहीं होता, आपकी प्रेजेंस से होता है। एक टीचर की कोई लाइन आपको याद रह जाए, किसी दोस्त का एक मैसेज आपको लाइन याद रह जाए, या किसी स्ट्रेंजर की एक स्माइल, और पूरा दिन चेंज हो जाता है। सिनेमा में भी शायद हमें यही सीखने को मिलता है कि हर सीन बहुत लेंदी हो ये ज़रूरी नहीं है, यादगार हो ये ज़रूरी है। सो आज का सवाल भी आपसे यही है कि आपका फेवरेट मूवी का सबसे पावरफुल सीन जो है वो कौन सा है, जो सिर्फ कुछ सेकंड्स का था लेकिन आपको लगा कि यार ये तो मतलब कुछ बहुत ही अलग और अमेजिंग था। नंबर है 3311-1063। मैं हूँ मुस्कान, आई विल बी राइट बैक, स्टे ट्यून्ड, जियो बिंदास।

So, कभी किसी सिटी को उसकी बिल्डिंग से नहीं उसकी खुशबू से याद किया है आपने? मतलब अगर मैं बात करूं दिल्ली की, आपने बहुत बार देखा होगा पुरानी दिल्ली से ना मसालों की खुशबू आती है। केरला की बात करूं तो वहां से नारियल और बारिश याद आता है। पेरिस की बात करूं तो वहां पर फ्रेश बेकरीज जो है वो हर जगह आपको उसकी खुशबू आएगी। और दोहा, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि पहली बारिश के बाद वो जो खुशबू आती है ना दोहा में, और हर कोई जो खुश हो जाता है। सो बहुत ही अमेजिंग चीज़ें हैं ये। साइंटिस्ट कहते हैं कि स्मेल जो है वो हमारी मेमोरी को सबसे पावरफुल शॉर्टकट होता है। जब मैं सूप वाकिफ जाती हूँ और वहाँ पर जो कुनाफा की खुशबू आती है ना एक पॉइंट पर, आई वॉज लाइक यार ये यहाँ की रियल खुशबू है। सो ऐसे छोटी छोटी जो फ्रेग्रेंसेस होती हैं सीधे आपको उस याद तक लेकर चली जाती हैं। इसीलिए कुछ लोगों को रेलवे स्टेशन की स्मेल अच्छी लगती है, कुछ लोगों को पुरानी किताबों की स्मेल बहुत अच्छी लगती है, और कुछ को दादी के घर के किचन की। सिटीज़ ना सिर्फ मैप पर नहीं होती, मतलब कंट्रीज़, सिटीज़, कुछ भी आप सिर्फ नक्शे पर नहीं देखते, कभी कभी वो एक छोटी सी याद बनकर हमारे साथ चलती रहती है। सो आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू कि आपको कौन सी सिटी या कौन सी कंट्री की जो स्मेल है वो आज भी याद है, जो सुनते ही और जो यू नो महसूस करते ही आपको याद आ जाता है कुछ, कोई कहानी, कोई किस्सा। यू आर लिसनिंग रेडियो ऑलिव, ये है मिडनाइट लाउंज और नंबर है 3311063। स्टे ट्यून्ड, जियो बिंदास।

0: तो भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त कतर की नंबर वन आरजे आरजे सिमरन के साथ जबरदस्त इवनिंग रोज शाम 5 से 9 ओनली ऑन 106.3 रेडियो ओलिव जियो बिंदास
1: आरजे सिमरन के साथ
2: यू आर लिसनिंग टू रेडियो ओलिव 106.3 FM जियो

आपके मॉर्निंग को बनाएंगे बिंदास मॉर्निंग। बिंदास मॉर्निंग सुनिए आरजे कशिश और सुदेव को हर सुबह 6 से 10 बिंदास मॉर्निंग में ओनली ऑन रेडियो ऑलिव 106.3 FM।

आप सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM। You are listening to Qatar's number one radio station, Radio Olive 106.3 FM. Jio Bindas. 106.3 FM.

सुनते हैं नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM।

0: सुनते हैं नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM।
1: चांद

सुनते हैं नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM. बिंदास। अब सुनिए ओलिव का जबरदस्त है।

आप सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM।

आप सुन रहे हैं रेडियो ओलिव 106.3 FM जियो बिंदास। अब सुनिए ओलिव का जबरदस्त हिट।

नालों वध सुकून आहा मैं पीरां दे जाया हवा ने पुछया बदलां नूं ए मौसम कोई नवा आया मैं पहली वारी वेख्या आसमां तो नशा आया

आप सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM।